0: होता है हमारे एक चलने लगे हम स्पिरिचुअल पथ पे। तो यही मेरे हिसाब से तो यही है कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लाइफ लॉन्ग तो क्या, मतलब लाइफ की जर्नी रहती है स्पिरिचुअलिटी। अल्टीमेटली हमारा सोल इसीलिए ही जन्म लेता है ताकि हम अपने आप पे काम करते रहें। मेन पर्पस तो हमारा सोल का वही रहता है,
1: जी
0: आत्मा का, कि आत्मा की शुद्धि हो, और उसी पे ही कैसे हम अलग अलग अपने विकार जो है वो नष्ट करते जाएं। इसीलिए जन्म जन्मांतर की मेरे ख्याल से ये जर्नी रहती है, यात्रा रहती है। एंड यही है कि कब इंसान मतलब बहुत दुर्लभ से ये मानते हैं हम लोग कि ये जीवन मिलता है। हर इंसान को ये योनि नहीं मिलती इंसान की, बहुत जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं उनको ये योनि में जन्म मिलता है। तो इसका हमें बहुत फायदा उठाना चाहिए इस चीज का कि
1: जी
0: हम ही एक ऐसे हैं इंसान की जो योनि बोलते हैं, जो उस स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसी और में ये पावर नहीं है। मतलब जैसे जानवर हैं, झाड़ है, पत्थर है, नदियां हैं, इनमें ये पावर नहीं होता, समझ नहीं होती। हम इंसान जब जन्म लेते हैं, वी हैव दैट पावर एंड द नॉलेज, ज्ञान जो हमें है उस प्रकृति का। तो इसे हमें बहुत दुर्लभ मानना चाहिए कि हम इतने मतलब थैंकफुल रहना चाहिए कि वी आर सो हैविंग दिस प्रेशियस लाइफ।
1: जी
0: तो ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और इस पे काम करना जरूरी है मेरे ख्याल से, हर आत्मा को करना चाहिए। पर हर एक का अपना समय रहता है।
1: तो दोस्तों, आपने जाना कि कितने आसान शब्दों में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान शब्दों में सुनीता मैम ने हमें बताया कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैम, मुझे आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने सबसे पहले कब सुना? किसने बताया आपको कि स्पिरिचुअलिटी कोई चीज होती है, कोई प्रैक्टिस होती है, एक धारा है जीवन की? सबसे पहले आध्यात्म से आपका परिचय कब हुआ?
0: मेरे ख्याल से मोस्टली जैसे हम फैमिलीज में देखते हैं, ये बचपन से ही हमारे मतलब माता पिता ही हमें बचपन से कुछ न कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं और कनेक्ट करवाते हैं उस हायर पावर से। तो वो तो आगे चल के हमें पता पड़ता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, बट मोस्टली तो ये सबके जीवन में बचपन से ही वो संस्कार डाले जाते हैं हर फैमिलीज में।
1: जी
0: तो वहां से ही स्टार्ट होता है ये बचपन से, हर फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, बट मेरे तो फैमिली में मैं बोलूंगी वहीं से ही स्पिरिचुअलिटी का मुझे ज्ञान बचपन से ही रहा, नॉलेज रहा। इनडायरेक्टली हमेशा स्टोरीज वैसी सुनाई गई, गाइड किया गया, या बुक्स ला कर दे दिए पढ़ लो, गाने सुनाए, मंदिर में ले जाना। तो वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया।
1: जी वेरी नाइस। जाहिर सी बात है, हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज हमेशा से रही है कि हमारे घर से ही हमको अध्यात्म के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में मालूम पड़ता है, और यही चीज सुनीता मैम ने भी बहुत क्लियरली बताई, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे एक प्यारा सा भजन सुनने के बाद मैं सुनीता मैम से और बातचीत करूंगा। हमारे साथ बने रहिए।

0: तो सुनीता मैम, आगे बढ़ते हुए प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या अध्यात्म को सीखने के लिए, समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को लर्न करने के लिए क्या हमें किसी टीचर की, गुरु की, किसी टीचिंग्स की जरूरत है?
1: स्पिरिचुअलिटी जैसे मैं अभी आपसे बता रही थी कि ये एक पाथ है, जर्नी है, एक पथ है।
0: जी
1: तो इसमें हर एक किस टाइम पे वो कॉन्शियस होता है आत्मा, कि उसको रियलाइज होता है कि अब मुझे मैं कौन हूँ। जब वो क्वेश्चन करना शुरू करती है आत्मा, तो वो जब इस पथ पे चलना शुरू करती है आत्मा लेवल पे,
0: जी
1: तब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूं से आ जाता है कि मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। अब आगे आ जाता है कि गुरु की जरूरत है।
0: जी
1: मेरा मानना ये है कि जब आप खुद अवेयरनेस में रहते हैं, तो गुरु अपने आप आपके पास आते हैं। जब आप रेडी होते हैं,
0: जी
1: तो गुरु अपने आप आपके पास आएंगे। आपको कहीं गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती,
0: ओके
1: पर हाँ, गुरु की जरूरत रहती है जब आपकी आत्मा उस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो तैयार होती है कि मुझे और ज्ञान चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो जैसे आप अलग अलग तरीके से इंसान का अलग अलग मार्ग रहते हैं ना, कोई भक्ति मार्ग करता है, कोई कर्म योग की करता है, कोई बुक्स पढ़ता है, कोई भजन जाता है करने, कोई चैरिटी में बिलीव करता है। हर एक का डिफरेंट वे है कि वो कैसा चाहते हैं, जिससे उन्हें वो पीस मिलता है। अल्टीमेटली ये इस जर्नी इज मोर लाइक पीस, पीस ऑफ योर ओन सोल।
0: जी
1: तो वो हम खोजने वही निकलते हैं पीस को। क्यों? क्योंकि मन आत्मा बड़ी दुखी है, अंतरात्मा दुखी रहता है। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, तो खोजना शुरू करती,
0: जी
1: मैं कौन हूँ, क्या करें, किधर जाएं। कोई सोचता है चलो भगवान की पूजा कर लें, हमारा थोड़ा ये तकलीफ कम हो जाएगी। कोई बोलता है मैं थोड़े बुक्स पढ़ लूं, है क्या। कोई बोलता है मैं भजन कर लूं। तो जब हम वो ढूंढना शुरू करते हैं, तो ये एक स्टार्ट होती है जर्नी की। और आगे चल के जैसे आप तैयार होते जाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से गाइडेंस देने वाला, हेल्प करने वाला कोई तो ऐसा गुरु मिल ही जाता है जो आपको इस जर्नी पे आगे ले जाता है।
0: जी बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है सुनीता मैम, बतला भी रही हैं ये, और ये बहुत नेचुरल सी बात लगती है कि अगर कोई मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो जरा आसानी हो जाती है, फिर चीजें जरा इजीली समझ में आ जाती हैं। बाकी तो जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस की बात है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे या सोचेंगे उस बारे में, तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आप कुछ कह रही हैं मैम?
1: यही मैं बोल रही थी कि गुरु जब हमें आता है हमारे लाइफ में, तो वो उसका बहुत मतलब, अब आप समझिए कि आप और ऊपर जर्नी में जाने ही वाले हैं, आप एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करने वाले हैं। और वो गुरु के साथ से ही, एक बोलते हैं ना, गुरु ही हमें जो भव सागर से पार लगा देता है। तो वो बहुत हेल्प हो जाती है। गुरु के पथ तो रहता है, पर गुरु के मार्ग में जब आजू बाजू में जो जंगल में हम जब चलते हैं, तो आपके जो भेड़ भेड़िए जो भी हैं, वो सब कोई तकलीफ नहीं देता, क्योंकि गुरु का साथ रहता है। आप आराम से वो पथ क्लियर कर लेते हैं।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। तो मैम जाहिर से बात है, हम लोग आध्यात्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, बिल्कुल साथ साथ ही चलता है, वो है धर्म, रिलीजन। आपके हिसाब से मैम, धर्म और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इनमें क्या फर्क है?
1: धर्म अगेन ये एक टूल है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: एक मींस टुवर्ड्स एन एंड है।
0: जी
1: तो एंड तो वही है स्पिरिचुअलिटी सबकी,
0: ओके जी
1: उस आत्मा से, उस सोर्स से कनेक्ट होना है। तो हमें उस ऊपर वाले में विलीन होना है। तो विलीन होने का मार्ग अलग अलग, जैसे टूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना रिलीजन के आप वो अचीव नहीं कर सकते। रिलीजन एक हेल्प हो जाता
0: जी जी
1: जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे चम्मच से खाना नहीं बनेगा या बड़े चम्मच ही चाहिए या ये, बट सही चम्मच अगर होता है तो एक आसान हो जाता है। तो
0: जी
1: मेरा मानना है कि रिलीजन का भी उतना ही काम है, उससे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए।
0: जी
1: रिलीजन शुड नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ, फिर आप भटक गए हो।
0: जी जी यू आर एब्सोल्युटली
1: तो
0: एब्सोल्युटली राइट मैम।
1: भटकना नहीं है, अगर आपने पाथ में जो आपका है वो पाथ से भटकोगे तो फिर इस वेद विवाद में ही अटके रहोगे, मेरा ये रिलीजन उसका वो रिलीजन उसका। हर रिलीजन का आप अगर ध्यान से पढ़ें, वही बोलता है सोर्स एक है, कनेक्ट उसी से होना है, अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो। कोई रिलीजन, जहां तक मुझे पता है, हर रिलीजन में ये चीज तो रहती ही है।
0: ओके
1: तो दिस आर ऑल जस्ट लाइक अलग अलग क्रिएशन है, बट अगेन इट्स जस्ट टूल्स, यू नो, अ वे जो हमें हेल्प करता है टू अचीव एन एंड।
0: ब्यूटीफुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बताया है मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, धर्म और आध्यात्म के बीच का फर्क। बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारे से भजन का आनंद लें और फिर सुनीता मैम से बात करने के लिए हम वापस हाजिर होंगे।

0: बहुत सुंदर। एक और शब्द यहां पर मौजूद है इन्हीं इसी पूरे गुलदस्ते में, इन्हीं फूलों के साथ एक और फूल, मेडिटेशन यानी कि ध्यान। अब जाहिर सी बात है जितना मैं समझता हूं छोटा मोटा, आपकी प्रैक्टिसेस में भी ध्यान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। तो क्या मेडिटेशन ध्यान किए बगैर भी, मान लीजिए मुझे मेडिटेशन नहीं आता, ध्यान लगाना नहीं आता, उस तरीके के ध्यान नहीं लगा पाता, मैं एक साधारण सा देहाती व्यक्ति हूं, तभी भी क्या मैं आध्यात्मिक हो सकता हूं बिना मेडिटेशन किए?
1: इसका मैं सिर्फ एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ कि आप ध्यान किसे कहते हैं, है ना, वो जानना जरूरी है। ध्यान का मतलब क्या है
0: जी?
1: मैं सरल भाषा में अगर कहूँ कि जब आप किसी गार्डन में जाते हैं, आपने एक सुंदर सा फूल देख लिया जो आपको पसंद है
0: जी,
1: और आप उस फूल पे ध्यान से देख रहे हो बड़े प्यार से और उसका आनंद ले रहे हैं, है ना, कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कितना सुंदर है, इतना पीसफुल लग रहा है, इतना, मतलब काफी टाइम से मैंने इतना सुंदर फूल नहीं देखा, उससे नजर नहीं हटती। अब आप मुझे बताइए उस टाइम पे आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं? नहीं आते,
0: नहीं आते हैं, उस वक्त कुछ नहीं आता,
1: आप जस्ट फोकस्ड हैं उस पे और एक सेंस ऑफ पीसफुलनेस है, ब्लिस है, शांति है।
0: करेक्ट,
1: तो ये एक मेडिटेशन है।
0: ओके,
1: इसे मेडिटेशन, तो मेडिटेशन क्या होता है, जब हम उस स्टेट में रहते हैं जहां हम अपने मन को शांत कर पाते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कोई गाना सुन लीजिए और आपको बहुत मन शांत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पीसफुल लग रहा है, कितने टाइम बाद इतना अच्छा गाना सुनने मिला, कुछ म्यूजिक सुन लिया, ये भी एक तरह का मेडिटेशन है। मेडिटेशन इज जस्ट अ वे जिसमें आपको बहुत, और इससे आपका कनेक्शन हो रहा है सोर्स से। ये एक एग्जाम्पल बेसिक लेवल पे मैं आपको दे रही हूँ, फिर वो चाहे आप भक्ति के मार्ग के करें, भजन कर लें, जब हम भजन भी बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं तो हम उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं ना, जहाँ बिल्कुल ब्लिसफुल लगता है, पीसफुल लगता है।
0: जी जी, यू आर सो एब्सोल्युटली
1: राइट। अब आपका क्वेश्चन कि मेडिटेशन
0: किए बगैर, जी
1: हाँ, अब ये तो मैं बता दिया कि मेडिटेशन के बगैर नहीं, आप कर ही रहे हैं मेडिटेशन, है ना, किसी ना किसी फॉर्म में आपका मेडिटेशन हो रहा है, आपको पता नहीं है। अब मेरा नेक्स्ट ये है कि क्यों करना चाहिए और क्या है इसका, उसका मैं ये बोलूंगी कि ये भी एक अनदर एग्जांपल मैं दूंगी कि आप अपने आप को समझिए, आप एक लैंप है।
0: ओके,
1: ठीक है, अब लैंप है तो आपको वायर तो डालनी पड़ेगी ना प्लग में,
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: स्विच भी ऑन करना पड़ेगा, तभी तो अंदर से पावर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी और फिर लैंप में लाइट आना शुरू होती है। तो ये मेडिटेशन उसी तरह काम करता है कि हमें उस सोर्स से पावर मिलता है
0: जी,
1: शक्ति मिलती है जब हम मेडिटेशन करते हैं।
0: ओके,
1: और उसमें हमारी आत्मा को तृप्ति फील होती है और उसमें से हमारी लाइट आना शुरू होती है, तो आत्मा शाइन होना शुरू होती है। जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप एक लैंप है।
0: ऑलराइट जी,
1: तो ये है। तो जब मेडिटेशन, मेरे ख्याल से कि अलग अलग वे होते हैं, बट जैसे हम, जैसे भी हम अपने, मतलब सोल लेवल पे, आत्मा लेवल पे जब हम कनेक्ट करते हैं, जहां हमें पीसफुल लगता है, बहुत मन शांत रहता है, माइंड डिस्टर्ब नहीं रहता है, ये भी एक मेडिटेशन ही है।
0: ऑलराइट, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पिक्चराइज करके, बिल्कुल जैसे एक एक एक फिल्म जैसी दिखा दी कि किस तरीके से आप एक मेडिटेटिव स्टेज में होते ही हैं, फिर आप चाहे महसूस करें उसको या ना करें, ये बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपने बात बताई मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इसका। तो दोस्तों बस एक प्यारे से भजन को सुने और फिर वापस से इसी तरीके की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानकारी से भरपूर भरी हुई बातों के लिए हम सुनीता मैम के पास वापस हाजिर होते हैं।

0: बहुत सुंदर सुनीता मैम, आपको क्या लगता है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी और जितना भी आप स्पिरिचुअलिटी को समझती हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी अपना लेने से या आध्यात्मिक हो जाने से कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है? मतलब अपने पर्सनालिटी में, अपने चरित्र में, अपनी शख्सियत में, अपनी जिंदगी को जीने के लिए? तो सवाल यह हुआ मैम कि क्या आध्यात्म हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारी पॉजिटिविटी के ऊपर कुछ असर डालता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ, 100%। क्योंकि आध्यात्म में इसमें क्या रहता है कि जब आप सबसे पहले ना अवेयरनेस मोड में रहते हैं, ठीक है, आप अवेयरनेस मोड में रहते हैं तो आपको अपने थॉट्स पे फोकस करना होता है कि मेरे पास ये क्या थॉट आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है।
0: जी।
1: तो आप उस अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन फोकस करते हैं, एज अ आउटसाइडर साइड में खड़े रहते हैं, आप अपने आप को देखते हैं कि मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है, मेरे दिमाग में ये सही आ रहा है, मेरे दिमाग में ये गलत आ रहा है। जब हम ये करना शुरू करते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू करते हैं, थॉट से ही तो बिल्ड होता है ना कि आपके जो एक्शंस हैं, तो
0: जी
1: द बिगिनिंग इज थॉट, थॉट से आता है एक्शंस, एक्शन से आ जाता है आपका कैरेक्टर, सही है। तो ये तो सभी को पता है, वो कैरेक्टर से फिर आपके थॉट से आ जाता है, एक्शंस एक्शन से आ जाता है, हैबिट हैबिट से आ जाता है आपका कैरेक्टर। तो द फर्स्ट स्टेप इसी का यही रहता है कि जब आप अवेयरनेस में हैं, आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, है ना। जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज हो रहा है कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, शायद मैं इसको थोड़ी और तरीके से अच्छे से हैंडल कर ली होती सिचुएशन, शायद मेरे को थोड़ा शांत होकर कुछ और

0: सुनीता मैम, अगर इस प्रोग्राम को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर कोई समझ जाए कि ऑल राइट, आध्यात्म मेरे बहुत काम की चीज है और मुझे इसको अपना लेना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप किसी भी साधारण व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगी? 1, 2, 3 ये प्रैक्टिसेस करिए या ये काम कर लीजिए सिंपल से, और आध्यात्म का फायदा या आध्यात्म का जो महत्व है आपको पता चल जाएगा आपके जीवन में, तो वो क्या सजेशंस आप देना चाहेंगे?
1: सजेशंस देखिए, ये तो इसमें काफी हर एक की अपनी इंटरेस्ट की लेवल भी रहती है, कितने जने स्टोरीज पढ़ना चाहेंगे, कितने जने बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बट एक सिंपल सी चीज मैं जो सजेस्ट करूंगी कि आप एक जर्नल रखिए और एट द एंड ऑफ द डे उसमें जो दिन में आपके साथ जो अच्छा हुआ, जिसके लिए आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू नो यूनिवर्स, तो वो आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाइए। ये एक बहुत सिंपल सी स्टेप है बट ये आपको बहुत हेल्प करती है कि आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं। जैसे आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाने से, तो एक थैंक्स रहते हैं ना हमेशा के
0: जी।
1: भगवान ने मुझे ये अच्छा किया, थैंक यू सो मच गॉड। तो जब हम उस मोड में रहते हैं तो वो एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस से हम चालू करते हैं, एक ये हो जाता है। ऑफ कोर्स बीइंग थैंकफुल फॉर एवरीथिंग,
0: करेक्ट जी जी जी,
1: दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मैं यही बोलूंगी, ट्राई टू स्टे कनेक्टेड मोर विथ नेचर, जितना हो सके आप प्रकृति से कनेक्टेड रहिए और ग्राउंडेड रहिए, वॉक करिए इवन ऑन द ग्रास विदाउट योर चप्पल। दीज आर द बेसिक्स जो मैं बोलूंगी कि ये सब करना ही चाहिए। थोड़ा आप अपने योगा करिए, लोम विलोम प्राणायाम करिए, ये प्रैक्टिसेस अपने स्टार्ट करिए, थोड़ा वॉक पे जाइए, ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं। डू सम प्रेयर्स, स्टार्ट फ्रॉम देयर, रीड सम स्टोरीज, व्हाटएवर यू रीड सम मॉरल स्टोरीज,
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज ट्राई टू बी काइंड, यू नो, वर्क ऑन योरसेल्फ टू बी अ बेटर पर्सन, ट्राई टू हेल्प अदर्स, दिस इज द बेसिक थिंग्स।

0: रखिए कि आप किस किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। थैंक यू कहते चलिए। आध्यात्म का ये तरीका भी बड़ा प्यारा है। बहुत सुंदर सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें चीजें बताई। जाहिर सी बात है, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, तो ये चीजें आपकी रोज की प्रैक्टिस में हैं, तो बहुत आसान तरीकों से आप किसी को भी बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इनको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिस करें। सुनीता मैम, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच इन कमिंग टू आवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट वॉज माई प्लेजर। थैंक यू।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक

टोटल। कैंसर एक प्यारा सा टोटल है, थोड़ा स्लो लेकिन बहुत इमोशनल। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो तो अपने शेल में चला जाएगा, लेकिन प्यार मिले तो आपके पास ही चिपक के बैठ जाएगा। लियो, ड्रामा किंग लायन। लियो ऑब्वियसली लायन ही होगा। एंट्री ऐसी जैसे स्टेज पर आ रहा हो, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और अगर इग्नोर कर दिया तो ड्रामा गारंटीड है। वर्गो, परफेक्शनिस्ट रैबिट। वर्गो एक रैबिट है जो हर चीज परफेक्टली चाहता है। फूड भी अलाइन होना चाहिए, स्पेस क्लीन होना चाहिए, और अगर कुछ भी ऑफ हो गया तो वो खुद ही ठीक करेगा। लिब्रा, स्टाइलिश स्वान। लिब्रा एक स्वान है, ग्रेसफुल, ब्यूटिफुल और हमेशा बैलेंस में, लेकिन उनके डिसीजंस उसमें खैर टाइम लगता है। ये खाना या वो खाना, ये ड्रेस या वो ड्रेस, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन, और वो बस सोचता ही रहेगा। स्कॉर्पियो, द मिस्टीरियस स्नेक। स्कॉर्पियो एक स्नेक है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। साइलेंट, ऑब्जर्वेंट, थोड़ा ज्यादा इंटेंस, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से इनकी पटती भी नहीं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सब कुछ, जान भी हाजिर है। सैजिटेरियस, द फ्री हॉर्स। सैजिटेरियस एक हॉर्स है जो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं करता, खुला मैदान, फ्रीडम और एडवेंचर। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये सीधा भाग जाएगा। कैप्रिकॉन, द वाइज एलिफेंट। कैप्रिकॉन एक एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग, काम, इंटेलिजेंट और फोकस्ड। हर चीज प्लान करके करेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अक्वेरियस, एक यूनिक डॉल्फिन। जी हाँ, अक्वेरियस एक डॉल्फिन है, डिफरेंट, इंटेलिजेंट और थोड़ी क्वर्की। कभी आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो खुद परफेक्टली क्लियर हैं अपने विजन में। और आखिरी राशि पाइसिस, द ड्रीमी फिश। पाइसिस एक फिश है जो अपनी ही दुनिया में रहती है, ड्रीमी, क्रिएटिव और हमेशा फुदकती हुई, और कभी कभी रियलिटी से थोड़ी डिस्कनेक्टेड, लेकिन दिल सबसे सॉफ्ट। दोस्तों, हर साइन अलग है, हर पेट अलग है, और हर इंसान भी अलग होता है। किसी में एनर्जी ज्यादा है, किसी में इमोशन ज्यादा है, किसी में लॉजिक ज्यादा है, और किसी में ड्रीम्स, ओ माय गॉड। अगर आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल मैं हूं, तो रिलैक्स, सबको लग रहा है। दुनिया इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सब अलग है, और अगर सब सेम होते तो लाइफ कितनी बोरिंग होती, साइमीज ट्विंस जैसे। इसीलिए अपने अंदर के पेट को समझो और दूसरों के पेट को एक्सेप्ट करो। मैं हूं आपकी दोस्त, अगली कहानी तक जरूर बताइएगा आपका जोडियाक पेट कौन सा है और क्या वो आपसे मैच करता है। तब तक के लिए अपनी वाइफ को एंजॉय करिए और लाइफ को थोड़ा फन बनाइए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: बजट रोमांटिक्स। ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, और डेट पे बोलता है स्प्लिट कर लेते हैं, इक्वालिटी भी तो इम्पोर्टेंट है।

हेनरीज कैफे, जहां चाय से ज्यादा कहानियां उबलती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी गर्म चाय जैसी। पहले सिप में सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसे महसूस करोगे, अंदर कहीं गहरा उतरती चली जाएगी। शहर और उसकी दौड़, ये कहानी है एक शहर की। बड़ा शहर, भीड़ भरा, रोशनियों से जगमग, और फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला। यहां लोग भागते बहुत हैं, पर रुकते कम हैं। मिलते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। और इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली थी, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता था, और वहां था हेनरीज कैफे। ना कोई फैंसी लाइट्स, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुराना सा वुडन बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था हेनरीज कैफे, और उसके नीचे छोटी सी लाइन थी, यहां चाय के साथ थोड़ा सा सुकून फ्री है। आप सोचोगे ऐसा क्या खास है इस जगह में? खास ये है कि यहां लोग चाय पीने नहीं, अपने आप से मिलने आते थे। हेनरी, वो कौन था? ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका पास्ट, ना उसकी कहानी। बस इतना पता था कि वो हर इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से बाहर खड़ा हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, और बस देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना जजमेंट्स के। एक अजीब सी बात, हेनरी के कैफे में एक अजीब सी बात थी। यहां मेन्यू सिंपल था, चाय, कॉफी, थोड़ा सा खाना, लेकिन हर ऑर्डर के साथ एक सवाल फ्री मिलता था। जी हाँ, एक सवाल, और वो सवाल कभी सिंपल होता था, कभी गहरा, कभी वो सिर्फ इतना ही पूछता था, तुम ठीक हो? और लोग हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हेनरी के सवाल में कुछ ऐसा था कि लोग थोड़ी देर बाद रुक जाते थे और फिर धीरे से कहते थे, शायद नहीं। रोज शाम को तीन लोग वहां जरूर आते थे, जैसे तीन अलग कहानियां एक ही किताब के अलग पेजेस हों। राघव, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, लेकिन आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन। वो रोज आता, चाय मंगाता और बस एक ही लाइन बोलता, यार समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरी मीरा, एक आर्टिस्ट, स्केचबुक हमेशा साथ होती थी, पर पेजेस अक्सर खाली रहते थे। उसके हाथ में टैलेंट था, लेकिन दिल में डर, डर कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरी, शांति अम्मा, एक बूढ़ी माँ जो रोज आती थी, एक ही कुर्सी पर बैठती थी और दूर देखते हुए चाय पीती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। एक शाम जो अलग थी, उस दिन बारिश हो रही थी, शहर धीमा पड़ गया था और कैफे में सिर्फ तीन लोग थे। हेनरी ने चाय सर्व की और इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर कल सब खत्म हो जाए। जी हाँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो आज क्या करोगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। सच सामने आता है। राघव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जॉब छोड़ देता, मैं वो करता जो मैं सच में करना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखा देती, चाहे लोग हंसें या समझें, मैं दिखाती। और शांति अम्मा ने बहुत धीरे से कहा, मैं उसे माफ कर देती, अपने बेटे को।
हेनरी ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, तो कल का वेट क्यों? अगले कुछ दिनों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। राघव ने सच में रेजिग्नेशन दे दिया, डर के साथ लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन प्लान की और पहली बार उसने अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाई। शांति अम्मा ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और बस इतना कहा, बेटा घर आ जाओ। एक दिन तीनों कैफे आए लेकिन दरवाजा बंद था, बोर्ड हटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा नोट, दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था, जिंदगी रुकती नहीं, बस कभी कभी हम रुक जाते हैं, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर है, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था। With love, Henry। तीनों वहां खड़े रहते हैं चुप। राघव बोला, ये कौन था? मीरा बोली, शायद एक इंसान। शांति अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं वो एक एहसास था। दोस्तों जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। वो आपको बदलने नहीं, बस आपको आपसे मिलवा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आप किसी की लाइफ में हेनरी बन चुके हो। कभी एक सही वक्त पर बोला हुआ शब्द, कभी एक सही वक्त पर दिया हुआ साथ, और कभी एक छोटी सी स्माइल किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। तो आज जब आप अपनी चाय पियेंगे या अपनी रूटीन में बिजी होंगे, तो एक बार रुक कर खुद से जरूर पूछेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब मिले तो कल का वेट मत करना। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक दिलचस्प कहानी। आज का थॉट सिंपल है, कभी किसी के लिए हेनरी बन जाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सवाल पूछना ही काफी होता है।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। हमेशा बिजी रहने वाले लोग, ये लोग इतने बिजी होते हैं कि फ्री होने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए। कल मिलते हैं, कल बिजी हूँ। पर तुम तो घर पे हो। हाँ घर पे बिजी हूँ।

वर्ड ऑफ द डे गैडजुकरी। दोस्तों, सुबह हो शाम हो या रात के खामोश पल, अगर आपके साथ बातें हो जाएं तो हर वक्त थोड़ा सा और खूबसूरत लगने लगता है। और आज की बात थोड़ी हटके है, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी सी फिल्मी भी है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है गैडजुकरी। सच बताऊं, पहली बार सुनोगे तो लगेगा जैसे किसी जादूगर का मंत्र हो, गैडजुकरी। चलिए इसको सीधी भाषा में समझते हैं। गैडजुकरी का मतलब होता है बहुत पुराने जमाने के शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्द जो आज हम रोज की जिंदगी में यूज नहीं करते, जैसे हे नाथ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, मेरा हृदय व्याकुल है। अब आप ही सोचो, अगर आज के व्हाट्सएप चैट में कोई लिख दे हे मित्र, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुरंत रिप्लाई आएगा, तू ठीक है ना, फीवर तो नहीं हो गया। आज हम लोग क्या बोलते हैं, और दोस्त क्या सीन है, सब चिल है, क्या कर रहा है। और अगर गैडजुकरी मोड ऑन हो तो यही मैसेजेस हो जाएंगे, आपका वर्तमान कार्यक्रम क्या है, आपका मन कैसा है। ये सुन के लगता है ना जैसे किसी ने मोबाइल हटा के सीधा इतिहास की किताब खोल दी हो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्रश को इंप्रेस करेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा रॉयल अंदाज में। वो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारी मुस्कान ने मेरे हृदय को छू लिया। लड़की ने देखा, 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाई तू ठीक है या किसी प्ले का रिहर्सल कर रहा है। गैडजुकरी एक अलग ही मैजिक होता है दोस्तों। जब आप कोई हिस्टोरिकल कहानी पढ़ते हो या कोई पुरानी फिल्म देखते हो तो वो पुराने शब्द आपको उस दुनिया में ले जाते हैं, जैसे आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो। एक सिंपल लाइन, मैं तुम्हें याद करता हूं, और एक पुराने अंदाज में, तुम्हारी यादों ने मेरे मन को घेरा हुआ है। अब बताओ, थोड़ा गहरा फील हुआ या नहीं। कभी कभी पुराने शब्द दिल के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे प्यार बोलने से ज्यादा प्रेम बोलने में एक अलग ही सॉफ्टनेस है। दुख की बजाय व्यथा, खुशी की बजाय आनंद, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये अपने साथ एक पूरी फीलिंग लेकर आते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसका भी ओवरडोज डेंजरस है। सोचो, घर पे मम्मी बुला रही हैं, बेटा खाना खा लो, और आप जवाब दो, हे मातेश्री, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं। मम्मी का जवाब, सीधा बोलना आ रहा हूं। ऑफिस या इंटर्नशिप में अगर गैडजुकरी चालू हो जाए तो बॉस बोले, फाइल कंप्लीट हुई, और आप बोले, हे प्रभु तुल्य अधिकारी, ये कार्य अभी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बॉस बोले, कल से मत आना भाई। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है, गैडजुकरी एक स्टाइल है, एक फ्लेवर है, एक अंदाज है जो कहानियों को खूबसूरत बनाता है, बातों को गहरा बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए, आज किसी एक दोस्त को थोड़ा गैडजुकरी स्टाइल में मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे हे मित्र, आपका दिन मंगलमय हो, और फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। मुझे पक्का लगता है या तो वो कंफ्यूज होंगे, या फिर हंस पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे आपको चेक करने के लिए, आपकी तबीयत चेक करने के लिए। चलिए एक और सीन। नॉर्मल, फोन क्यों नहीं उठाया। गैडजुकरी स्टाइल, हे प्रिय, तुमने मेरे आह्वान को क्यों अनसुना किया। रिप्लाई, फोन साइलेंट था यार। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिंपल शब्दों में ही सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना, तो वही बात एक याद बन जाती है, एक मोमेंट, एक मेमोरी शायद। और शायद यही है गैडजुकरी का असली मतलब।
शब्दों को थोड़ा और खूबसूरत बना देना और थोड़ा और महसूस करवा देना। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए शब्द, एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी बातों में थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा जादू और थोड़ा सा स्टाइल जरूर रखिए।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋಳೆಗನ ಜಿ.

जोडियाक जंक्शन, जब 12 रास्ते एक ही मंजिल तक ले गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है। इसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके डिसीजंस सब कुछ एकदम हटके हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर हो और हर इंसान अलग रास्ते से चल रहा हो तो क्या होगा? अगर एक दिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आ मिले। एक अजीब सी जगह थी, न मैप पर मिलती थी न गूगल पर। नाम था जोडियाक जंक्शन, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन जहां से वो लोग आते थे जो लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे या फिर जो अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते थे। उस रात वहां 12 लोग मिले, सब अलग, सब यूनिक और सब अपनी कहानी के साथ। अर्जुन हमेशा जल्दी में। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर आते ही बोला, ट्रेन कहाँ है, मुझे जल्दी है। उसे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके लिए लाइफ रेस थी, बिल्कुल एक एरीज की तरह। भावना कंफर्ट क्वीन। भावना ने पहले बेंच चेक की, ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। उसके लिए सफर का मजा सुकून में था, बिल्कुल एक टॉरस की तरह। चिराग नॉन स्टॉप टॉकर। चिराग ने आते ही सबसे बात करना शुरू कर दी, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और बिना जवाब का वेट किए खुद ही बोलता रहा, बिल्कुल एक जेमिनी की तरह। छवि दिल से जीने वाली। छवि थोड़ी इमोशनल थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बोली, ये जगह थोड़ी अजीब सी फील दे रही है, नहीं, बिल्कुल एक कैंसर की तरह। लक्ष्य अटेंशन मैग्नेट। लक्ष्य एंट्री ऐसे करता है जैसे हीरो हो किसी फिल्म का, गाइज रिलैक्स मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट, बिल्कुल एक लियो की तरह। वीरेन परफेक्शन लवर। वीरेन ने पहले ही 10 बार शेड्यूल देखा, फिर क्लॉक देखी और फिर बोला, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, टाइमिंग सही है, बिल्कुल एक वर्गो की तरह। लीना कंफ्यूज्ड बट चार्मिंग। लीना 2 टिकट्स हाथ में लिए खड़ी थी, ये वाली लूं या वो वाली, डिसीजन उसके लिए एक एडवेंचर था, बिल्कुल एक लीब्रा की तरह। समर एक साइलेंट ऑब्जर्वर। समर चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सबको देख रहा था, जैसे सबकी कहानी समझ रहा हो, बिल्कुल एक स्कॉर्पियो की तरह। कबीर एक फ्री सोल। कबीर ने बोला, यार कोई भी ट्रेन आ जाए मैं तो चढ़ जाऊंगा, उसके लिए मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल एक सैजिटेरियस की तरह। देव फोकस्ड। देव सीधा खड़ा था, मैं यहां एक रीजन से आया हूं, एक टारगेट से, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा, बिल्कुल एक कैप्रिकॉर्न की तरह। अयान एक अलग थिंकर। अयान ने अचानक बोला, गाइस क्या हो अगर ट्रेन ही इल्यूजन हो। सब उसे देखते रह गए, बिल्कुल एक अक्वेरियस की तरह। मेहर ड्रीमिंग। मेहर आसमान देख रही थी, शायद हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, बिल्कुल एक पाइसिस की सोच। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए, जोडियाक जंक्शन पर आने वाली ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्ची मंजिल जानते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या सच में उन्हें पता था कि वो कहां जा रहे हैं? अर्जुन रुक गया, पहली बार शायद मुझे नहीं पता। भावना बोली, मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, मंजिल नहीं सोची। चिराग चुप हो गया, सच में पहली बार। हर किसी को रियलाइज हुआ कि वो बस चल रहे थे लेकिन पता नहीं था कि कहां जा रहे हैं। तब समर ने धीरे से कहा, शायद ट्रेन यहां आएगी ही नहीं। सब शॉक हो गए, क्या मतलब? समर बोला, शायद ये जगह ट्रेन के लिए नहीं है, ये जगह हमें रोकने के लिए है।
ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं। और उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, जोडियाक जंक्शन एक स्टेशन नहीं था, एक पॉज था। कोई ट्रेन नहीं आई, लेकिन सब वहां से चल दिए अपनी अपनी डायरेक्शंस में, लेकिन इस बार एक क्लियर माइंड के साथ। अर्जुन धीरे चला, भावना ने कंफर्ट के साथ एक पर्पस भी चूज किया, चिराग ने सुनना सीखा और हर किसी ने अपनी मंजिल खुद डिसाइड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर कभी ना कभी खड़े जरूर होते हैं, जहां हम रुकते हैं, कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं मैं जा कहां रहा हूं। और शायद वही पॉज जरूरी होता है, क्योंकि बिना रुके सही रास्ता कभी नहीं मिलता। मैं हूं आपकी दोस्त, और आज का सवाल बहुत सिंपल है। आप अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर हो या ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हो? सोचिए, और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्टा पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये तो साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, हे मेरे, कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: कोयले की कहानी।
2: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था?

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: फंदे से, फंदे से, फंदे से, रस्सी कहे अचंभे से, मेरा धागा तेरे पास सदा मिलेगी तुझको खास।
1: बड़ मक्कड़ बम्बे बाओ, बम्बे बाओ, बम्बे बाओ,
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बाओ, अस्सी नब्बे पूरे सौ, सौ में निकला धागा, जोर निकल के भागा।
1: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बाओ, अस्सी नब्बे पूरे सौ, सौ में निकला धागा, तो चोर निकल के भागा। बच्चों खूब हंसो मजे करो, बैठे ना रहो, खूब हंसो मजे करो,

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।
2: अरे किशन, किशन बेटा, कहाँ है तू?
3: क्या है काका,
2: आज पाठशाला नहीं जाना
3: है? काका आज तो रविवार है।
2: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन तो जा, आज तू ही पशु चरा ला।
3: काका मुझे तो आज पाठ याद करना है।
2: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
3: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ।

0: इधर उधर नहीं देखता।
1: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
0: अच्छा,
1: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
0: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
1: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
0: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था, तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शंभू, ओ शंभू, किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हिया, हप हप हप, चला चला चला है।
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू,
5: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देखना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
5: ओफो,
4: तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा, मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
3: चलो चलो चलो।
7: अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
4: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
7: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिक रहे हैं? किसने किया ये सब?
4: वो काका शंभू है ना, उसके पशु खेत में घुसाए थे।
7: और शंभू कहाँ था?
4: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
7: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
4: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
7: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
4: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
7: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
0: मेरे पास लाठी है ना,
7: हाँ,
0: इसी से। और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
7: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो।
0: चलिए काका, चल शेरू, आ।
2: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
7: शंभू! अरे ओ शंभू!
0: अरे ओ शंभू!
5: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया? सोने नहीं देता।
0: क्या है?
7: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूं। उठ और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
5: आप मुखिया साहब, आपके खेत किसने उजाड़े?
7: मुझसे पूछ रहा है।
8: तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
5: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
0: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
8: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
5: लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं?
8: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
5: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
7: अच्छा चल जा और देख।
5: हाँ?
7: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना।
5: जी।
7: किसी और के खेत में ना घुसें।
5: जी।
7: आज तुझे छोड़ रहा हूँ।
5: जी।
7: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
5: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
7: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
0: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
7: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
0: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू, आ।
2: किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
1: मेरा किशन बड़े काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
4: काका।
1: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
4: अच्छा काका, चल शेरू, आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: तो श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
0: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
0: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओ, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कानाराम चौहान, गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
0: जिला और
2: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैर कर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा,
4: कौन हो तुम?
3: मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुड़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाई आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलीपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब न। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र,

0: लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।
0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
2: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
2: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ओह, ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः, प्रातः।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल,

इया से कोई भी शब्द नहीं है, इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गांव, जहां।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत।

0: और स्वास्थ्य पर चर्चा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
1: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
0: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
1: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
0: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
1: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
0: जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
1: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
0: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
1: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
0: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
1: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
2: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए।
1: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति है वही खाए, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
1: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
1: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं
1: जी।
0: और डॉक्टर साहब,
3: खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
0: बताइए
1: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
1: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें
0: जी। और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए, कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
1: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह

0: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
1: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
3: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, आइए डालते हैं एक नज़र झाबुआ के मौसम के ऊपर। तो झाबुआ का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और कल की वर्षा 9.6 मिलीमीटर और अब तक की कुल वर्षा 65.5 मिलीमीटर नापी गई है।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: किसान साथियों, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। और किसान साथियों, आज का हमारा टॉपिक है धरती के रक्षक। हमारे किसान मित्र कौन कौन से हैं और हमारी धरती के रक्षक कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं एक छोटे से प्यारे से बिली गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कौन है हमारे धरती के मित्र, कौन है हमारे किसान मित्र। आइए करते हैं इन पर चर्चा।
1: बेहतर सेहत की कुंजी जमीन से जुड़ी होती है। जैसी भूमि होगी वैसा ही उससे अनाज मिलता है, यानी मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं और हमें जो अनाज मिलता है उसमें वो तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर पर अच्छा बुरा असर डालते हैं। हमारे देश के किसान इस बात को बखूबी समझ चुके हैं, इसीलिए तो किसान रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक व जैविक खेती को अपना रहे हैं। इस धारा से किसानों को जोड़ने के लिए सरकार भी पहल कर रही है और कई संस्थाएं भी। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जाना जाने वाला पतंजलि संस्थान अब जैविक खेती के लिए भी अहम कदम उठा रहा है। इस समय कई तरह के उर्वरक बनाए जा रहे हैं, साथ ही फसलों में लगने वाले रोगों के लिए भी दवाएं बनाई जा रही हैं। डॉक्टर रामकुमार बताते हैं कि वो मिट्टी की जांच करने के लिए एक किट भी देते हैं, जिससे जमीन की यथास्थिति के बारे में मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जानकारी मिल जाती है।
2: पतंजलि योगा और आयुर्वेद में काम करने के साथ कृषि जगत में भी काम कर रहा है, जिसके लिए हम ऑर्गेनिक क्षेत्र में बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। आज हम 45,000 से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसके लिए पतंजलि बहुत बृहद स्केल पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, जिसमें क्रोम, पतंजलि जैविक खाद, पतंजलि पोटास और उसके साथ नेचुरल एजोटोबैक्टर पीएसबी, राइजोबियम, केएमबी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही डिजीज मैनेजमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बर्टिसिलियम, मेटाराइजियम भी प्रोवाइड करते हैं। नीम ऑयल के प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्गेनिक इनपुट का है और सर्टिफाइड है। जमीन की टेस्टिंग करने के लिए हम धरती का डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, जो 15 से 20 मिनट में आपके खेत में आपके लैब पर ही टेस्टिंग किया जा सकता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन और पीएच हम एक टेस्ट कर सकते हैं।
1: बाजार में इस समय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, इसीलिए भी किसान जैविक व प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। रासायनिक खेती की तुलना में प्रमाणिक जैविक खेती में बुआई से लेकर भंडारण तक में विशेष ध्यान देना होता है। इस तरह की खेती करने वाले किसान प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत होने चाहिए, इसीलिए उन्हें उस संस्था के मापदंडों के हिसाब से ही खेती करनी होती है। इससे गुणवत्ता बनी रहती है और बाजार में उपज का सही दाम भी मिलता है। खेती के पहले राज्य प्रमाणीकरण संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद जब किसान फसल की बुआई करता है तो संस्था के द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
3: जैसा कि आप जानते हैं, अभी जैविक उत्पाद की बहुत डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, लेकिन उसकी सत्यता की, प्रमाणिकता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के द्वारा कृषि उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण किया जाता है, और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को भारत सरकार की तरफ से एज ए रीजनल काउंसिल की मान्यता मिली है कि किसानों के उत्पाद का हम जैविक प्रमाणीकरण करते हैं। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट 5 राज्यों में प्रमाणीकरण का काम कर रहे हैं। इस प्रमाणीकरण से पहले हम किसानों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके रिकॉर्ड मेंटेन कराते हैं और उनके उत्पाद का जैविक प्रमाणीकरण करने के बाद में किसान जो है अपने उत्पाद का मार्केट में अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। इसके लिए हम मार्केटिंग के लिए किसानों को दूसरी संस्थाओं के साथ उनकी टाई अप कराते हैं, और आज हमारे साथ करीबन 2,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं जो अपने उत्पाद का उचित मूल्य मार्केट में प्राप्त कर रहे हैं।
1: कुछ संस्थाएं तो किसानों को प्रशिक्षण भी देती हैं। किसान जैविक खेती को अपनाने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में उन्हें अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि ग्राहक को जैविक और अजैविक उत्पाद में कोई अंतर नहीं समझ आता। ऐसी समस्या का समाधान है प्रमाणीकरण जैविक खेती, जो किसान को उसकी मेहनत का सही दाम अदा करने में सहायक है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ। खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आगे जानेंगे, उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं प्यारे से भिली भिली गीत को।

0: अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शुकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक माँ का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं। बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। इतनी खूबियों के बाद भी इनका आहार बहुत ही साधारण होता है। शुकर सामान्य तौर पर सड़े फल सब्जी, अनाज, रसोई घर की जूठन, फार्म या कारखानों से निकला अनुपयोगी पदार्थ खाकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो आयु के हिसाब से शुकर का आहार निर्धारित किया जाए तो बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं। जैसे 1 से 2 माह तक आधा किलो दाना, 2 से 3 माह तक 1 किलो दाना, 3 से 4 माह तक 1.25 किलो दाना, 4 से 5 माह तक 1.5 किलो दाना, 5 से 6 माह तक 2 किलो दाना, गाभिन शुकरी को 2.5 किलो दाना, बच्चों को दूध पिलाने वाली शुकरी को 3 किलो दाना। चारा दाने के अलावा शुकर को हरा चारा जैसे ल्यूसन, मटर, हरी घास, ज्वार भी देना चाहिए, जिसकी मात्रा 1 किलो प्रति शुकर होनी चाहिए। वहीं दाना दिन में 2 बार देना चाहिए, जबकि हरा चारा 1 बार देना चाहिए। बहुउपयोगी शुकर से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए इनका आवास बनाते समय खास ध्यान देने की जरूरत है। आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में सुरक्षा दे सके। आवास के साथ बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शुकर आसानी से घूम फिर सके। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहनी चाहिए। शुकरों को मुख्य रूप से स्वाइन फ्लू, खुरपका मुंहपका, शुकर चेचक, गलघोंटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान या पशुपालक शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। किसान शुकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुकर पालन किया जा सकता है, जो कई गुना लाभ देने में सहायक है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान भाइयों, बारिश का मौसम है और आइए जानते हैं पशुओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। हमें पशुओं का ध्यान कैसे रखना चाहिए और पशुओं को इस बारिश के समय में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीजें हमें उन्हें देना चाहिए, कैसा आहार हमें देना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसीलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें।
1: किसान भाइयों, अभी आपने पशु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आइए लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को।

0: मेरा मानना है कि खेती ये केवल एकांगी विषय नहीं है, ये तो न केवल सबके पेट भरने का एक तरीका है बल्कि संपूर्ण जो जीव सृष्टि है उसके लिए खेती है। खेती के जो पहलू हैं मुझे लगता है कि इसके कम से कम चार पहलू हैं, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी। और दो प्रश्न अगर हम करें तो इन दो प्रश्नों में इन चारों का उत्तर आता है। खेती क्यों की जाए और खेती कैसे की जाए। खेती क्यों की जाए, हम इस पर विचार करते हैं तो लोग खेती जो करते हैं वो भावनात्मक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से और कुछ सामाजिक कारणों से लोग खेती करते हैं। खेती कैसे की जाए ये इसका एक तकनीकी पक्ष है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। वर्तमान में हमारे सामने दो प्रकार की नाम आते हैं, एक रासायनिक खेती, एक रसायन मुक्त खेती। तो जहाँ तक रसायन खेती की बात है तो उसका कोई और बहुत सारे नाम नहीं है। रासायनिक खेती का मतलब है उसमें रसायन डालना है, खेती करनी है। और जब हम रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे नाम हमारे आज ध्यान में आ जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक कृषि है, गौ आधारित खेती है, बैल आधारित खेती है, बायोडायनामिक खेती है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, और भी बहुत सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरागत खेती थी वो पूरी तरह से गैर रासायनिक खेती थी। गैर रासायनिक खेती के आधार पर हम हजारों वर्षों से खेती करते चले आ रहे थे, लगभग 10,000 वर्ष का हमारा ये खेती का इतिहास है। तो अभी वर्तमान में निसंदेह जो आधुनिक विज्ञान है उसके कारण से खेती के बहुत सारे तौर तरीके, पद्धतियाँ हमारे सामने आईं और उसका एक अच्छा और सुखद परिणाम भी हमको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस सुखद परिणाम के साथ में कुछ दूरगामी और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। दूसरे, हम खेती को इस रूप में भी देखते हैं, चूँकि मेरा सामाजिक एक संबंध भी है, अक्षय कृषि परिवार नाम की एक संस्था जो खेती संबंधित सारे विषयों पर पूरे देश में काम करती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि खेती इसके पांच पहलू और जिन पर और अधिक काम होने की आवश्यकता है।
1: वो कौन से हैं पांच पहलू, उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, आइए चर्चा करते हैं उन पांच बिंदुओं पर जिन पर टिकी है हमारी कृषि भूमि। कृषि में उन पांच बिंदुओं का ध्यान रखकर कैसे हमारी कृषि को हम उन्नत बना सकते हैं, कि किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी कृषि करनी चाहिए। आइए जानते हैं उन पांच बिंदुओं को और चर्चा करते हैं उन पर।
2: कहीं कहीं काम हो भी रहे हैं, जैसे कि हमारा परिसर हमारी पहचान। किसान को आज ये बहुत जरूरी है जानना कि उसके आसपास जो वातावरण है वो कैसा है, उसके खेत की मिट्टी कैसी है, वहाँ हवामान कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा रहता है, वहाँ के कीट पतंगे जीव जंतुओं की स्थिति कैसी है, वहाँ का पानी का स्तर कैसा है।

0: किसान को अपने आसपास के वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, खेत की मिट्टी की सेहत पता होनी चाहिए, जिससे वो अपनी कृषि को लाभ के आयाम पर ले जा सके। इसके लिए वो भूमि के सुपोषण पर विशेष ध्यान देते हैं।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
0: खेत की मिट्टी की सेहत पता होनी चाहिए, जिससे वो अपनी कृषि को लाभ के आयाम पर ले जा सके। इसके लिए वो भूमि के सुपोषण पर विशेष ध्यान देते हैं।
2: तो ये हमारा परिसर, हमारी पहचान, इसके अंतर्गत ये जानना जरूरी है। दूसरे, भूमि का सुपोषण। किसान के बारे में कहना चाहूँगा अपने अनुभव से कि भूमि यदि हमारी मजबूत होगी तो हर फसल हमारी मजबूत हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी का क्षरण हुआ है, भूमि का ह्रास हुआ है। कारण उसके चाहे जो भी हो, चाहे रसायन उसका कारण हो सकता है या अन्य जो हमारे जो फसल करने के तरीके हैं वो एक कारण हो सकता है। तो भूमि का मजबूत होना, भूमि का सुपोषित होना ये बहुत ज़रूरी है। और भूमि सुपोषण जो है ये किसान ही कर सकता है। भूमि का सुपोषण इसके लिए निश्चित रूप से हम जब विज्ञान की भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं पीएच उसका निगेटिवली इम्बैलेंस होता है, या फिर उसमें जो कार्बन की मात्रा है मिट्टी के अंदर वो कम हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी कमज़ोर हो गई है। वो सब करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर और जितना अधिक बायोमास हम उसमें प्रयोग करेंगे उतना उसको लाभ मिलेगा। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, अधिक करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सीधे सीधे उसकी बात रहती है। तो उसके प्रयास भी कहीं ना कहीं कम हुए, इसलिए भूमि का सुपोषण ये उसका एक आवश्यक पहलू है। तीसरा रहता है हमारा मनुष्य और पशु चालित यंत्र, क्योंकि यंत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान खेती में है ही। हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ट्रैक्टराइजेशन ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ट्रैक्टर के लाभ अनेक हो सकते हैं, लेकिन साक्षात खेती में हम देखेंगे तो ट्रैक्टर के अनेक प्रकार के नुकसान भी हैं। उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ट्रैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं एक कर्ज का और एक बोझ का कारण खास तौर से छोटे किसान के लिए ये बनकर रह गया। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ पूरे देश में मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि 40% के आसपास किसान आज भी जो है ट्रैक्टर के बिना और पशु आधारित खेती ये देश में करते हैं। तो वहाँ की जो खेती की स्थिति है वो अधिक मजबूत है, वहाँ की जो मृदा की स्थिति है वो अधिक मजबूत है। तो छोटे यंत्र, चाहे वो मनुष्य चलित हों चाहे वो पशु चलित हों, उस पर भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम करने की और होने की आवश्यकता है। तीसरा हमारा एक पहलू आता है कि ये जो हम बात करते हैं फसलों की, तो किसान सामान्यतः खेती करता है और खेती करने के बाद वो फसल को सीधे सीधे जाकर बाजार में बेच देता है। उसके कारण से ये होता है कि उसका जो एक बड़ा लाभ है उससे वंचित रह जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि टिल हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। तो किसान अपना काम केवल टिल हार्वेस्ट करता है, फसल आने तक काम करता है। फसल आने के बाद उसकी छोटा सा छोटा काम करके भी अनेक प्रयोग देश में जो चलते हैं कि उसकी कुछ नहीं है तो उसने शॉर्टिंग ग्रेडिंग कर दी, या फिर उसका कुछ नहीं है तो ठीक से पैकेजिंग कर दी, उतना करने मात्र से और किसान को एक बड़ा लाभ उसमें हो सकता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि उसका एक आर्थिक पहलू, तो आर्थिक पहलू पर शायद अधिक ध्यान दिया गया, इस कारण से हमने उत्पादन की ओर ध्यान दिया लेकिन गुणवत्ता हमारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिगड़ी। तो ये सारी जो समझ हमारी बनी है, इसमें निसंदेह इस समझ को वास्तव में बनाने का काम कुछ व्यक्तिगत लोग बहुत सारे करते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं इस रूप में काम करती हैं और स्वतः संज्ञान लेकर के भी विभिन्न माध्यमों से चाहे आसूस।
0: डॉक्टर गुणाकर मानते हैं कि किसान अपनी फसल से और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर फसल को किसान सीधे सीधे बाजार में बेच देते हैं तो वो अतिरिक्त लाभ को खो देते हैं, लेकिन अगर किसान कुछ बातों का ध्यान रखे तो मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है।
1: किसान भाइयों, अभी हमने सुना उन 5 पहलुओं को जिन पर ध्यान देकर हम हमारी कृषि को और अच्छे से बना सकते हैं, हमारी कृषि के साथ ही साथ हमारे जो आय के स्रोत है उन्हें भी हम सुदृढ़ बना सकते हैं। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आज हमने खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो टांडिया भील आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई और भी जानकारियों को आप तक साझा करते रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने न केवल अपने लंबे प्रशासनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहितकारी बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। आज हमारे अतिथि हैं श्री जीडी अग्रवाल जी, राजस्थान परिवहन विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी। अग्रवाल साहब ने अपने टेनोर के दौरान डीलर एंड रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट, वन टाइम टैक्स जैसी कई इनोवेटिव व्यवस्थाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सबसे खास बात श्रोताओं, जो बात इसके लिए हमने आज इनको यहाँ इन्वाइट किया है हमारे साथ परिचर्चा में, वो ये है कि अग्रवाल साहब आम अधिकारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद अपनी किताबें पढ़ने, अखबार पढ़ने में व्यस्त नहीं रहे हैं। इसके बाद भी इनका, रिटायरमेंट के बाद भी इनका सफर रुका नहीं है। आज वे रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पेंशनर सोसाइटी के माध्यम से युवाओं और समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके बारे में हम इस परिचर्चा में इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे कि रोड सेफ्टी क्या है और उसके विभिन्न पहलू क्या है। तो आइए स्वागत करते हैं श्री जीडी अग्रवाल साहब का और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक प्रशासनिक यात्रा, रिफॉर्म्स, रोड सेफ्टी मिशन और जीवन के अनुभवों के बारे में। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही कर लेते हैं, आपके बचपन से कर लेते हैं।

0: ऑडिट के कार्य से, एजी के ऑफिस के कार्य से ऑडिट पर रहते थे, और 2 महीनों की जल्दी शादी हो जाने के कारण, क्योंकि भाइयों में मैं सबसे बड़ा था फिर, तो इसलिए मेरे पे जिम्मेदारी ज्यादा थी। तो मैंने 18 साल करके, 18.5 साल में ही नौकरी कर ली थी। मैं पीएनटी डिपार्टमेंट में, पहले मैं, मेरी पोस्टिंग हुई वो सेकेंडरी के मार्क्स मेरे अच्छे थे, उसके आधार पर मैंने नौकरी ले ली। फिर ऐसे जो मैं कमर्शियल टैक्सेस में आया, फिर लास्ट में फिर मैं ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस में आया।
1: अच्छा, तो चलिए, ये तो आपका जीवन काफी संघर्ष का भी रहा और एक तरह से प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आने के बाद आपको आपकी शुरुआत हो गई। अब ये बताइए, थोड़ा ये ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं। आम लोगों से की ये धारणा है कि यहाँ सिर्फ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक ही काम सीमित होता है, यही काम होता है जिससे जनता का सांपता पड़ता है। तो अब मुझे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग की फंक्शनिंग क्या है, उसके वेरियस काम क्या क्या वो करता है और उसके परव्यू में क्या क्या आता है, कुछ एक ओवरव्यू सा दीजिए, क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं तो मैं सोच रहा हूँ आपसे ये ज्ञान हमें मिलना चाहिए, हमारे श्रोताओं को सारा।
0: पहले तो आलोक जी, मैं ये स्पष्ट करूंगा कि एक पब्लिक को एक कॉन्सेप्ट में ये रहता, परसेप्शन ये है कि रोडवेज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ही है,
1: जी
0: जबकि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, पहली चीज। तो
1: ठीक
0: दूसरा,
1: है,
0: मैं ये बताना चाहूंगा मेरे श्रोताओं को कि ये इसमें 6,000 CR का एनुअल रेवेन्यू है इसमें डिपार्टमेंट का। तो
1: अच्छा
0: ये कमर्शियल टैक्सेज, एक्साइज और रजिस्ट्रेशन स्टैम्प डिपार्टमेंट के बाद चौथा जो हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट है।
1: अच्छा

0: और व्हीकल्स होते हैं जैसे टैक्सीज, ऑटो रिक्शा, बसेज, ट्रक वगैरह, इनको भी रेगुलेट करता है। इनके एनफोर्समेंट, व्हीकल की चेकिंग होती है, टैक्स की रिक्वरी की रिवेन्यू होती है, रोड सेफ्टी पे भी हम काम करते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल पे भी हम काम करते हैं। तो इसे इसका स्कोप तो बहुत बड़ा है और ये राजस्थान गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में से ये है।
1: अच्छा, तो जैसे अन्य सरकारी विभाग होते हैं उनमें इसमें क्या डिफरेंस है? अब इसकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बहुत व्यापक है, क्योंकि इसमें देखते हैं कि कई बार इनको पुलिसिंग पावर्स भी होती है, व्हीकल भी जब्त कर लेते हैं और जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उन पे भी कार्रवाई कर लेते हैं। तो ये क्या क्या है, इनकी इस तरह की पावर्स हैं क्या इनके पास जो है? पुलिस वाली पावर्स भी होती है क्या ट्रांसपोर्ट वाली?
0: हाँ, हमारे पास जो व्हीकल रिलेटेड सारी पावर्स है, चेकिंग के, तो व्हीकल्स के चेकिंग रिलेटेड यूनिफॉर्म, हमारे जो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, वहाँ तक यूनिफॉर्म्स होती हैं, उनके
1: अच्छा।
0: फ्लाइंग इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो वो सब इस चीज को एनफोर्स करते हैं कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के जो रेगुलेशंस हैं तो उसका कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, जैसे ओवरलोडिंग है या कोई, जैसे आम पब्लिक का तो यह है कि हेलमेट नहीं पहन रहा, मोबाइल यूज कर रहा है गाड़ी चलाते टाइम, या
1: अच्छा।
0: सीट बेल्ट नहीं लगाया, ये एक पब्लिक का। और भी इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान का उल्लंघन होता है उन सब पे हम लोग कार्रवाई करते हैं, विशेषकर हम लोग ओवरलोडिंग पे, जो ट्रकों पे ओवरलोडिंग होता है उस पर कार्रवाई करते हैं। और
1: अच्छा।
0: दूसरा चीज, हम लोग जो है रेवेन्यू, जो टैक्स, जो डिफॉल्टर्स, जो गाड़ियां है उन पर कार्रवाई करते हैं, तो उनको बंद भी करते हैं, और उनका फिर अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते तो उन गाड़ियों का फिर ऑप्शन भी करते हैं। तो इस तरह से कि ये
1: अच्छा।
0: रेवेन्यू, मतलब मेनली तो ये रेवेन्यू और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है।
1: अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा और तक काफी सवाल कर रहा हूँ। जैसे मान लो हाईवे पे या किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसमें जो व्हीकल है उसकी क्या डिफॉल्ट है या उसने क्या गलती की, तो उस एरिया के अंदर भी आपका कोई पहुंच होती है उस टाइम जब एक्सीडेंट्स होते हैं? तो उस टाइम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या होता है?
0: इसमें आलोक जी, मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई जो सीवियर एक्सीडेंट होता है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा मर जाते हैं आदमी रोड एक्सीडेंट में,
1: अच्छा
0: उसकी
1: अच्छा
0: हम लोग इंक्वायरी, हमारे जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो स्पॉट पे जाके इंक्वायरी करते हैं। वैसे तो जनरली पुलिस पुलिस का ही काम है रोड एक्सीडेंट्स के बाद जो एक्शन लेने का, लेकिन वो उस अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है तो उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करता है, उसको रिकमेंड भी करता है किस तरह से कार्रवाई, और उसमें फिर अगर कोई लाइसेंस सस्पेंड भी करते हैं हम ड्राइवर का, अगर ड्राइवर की गलती होती है या उसकी फिटनेस, उसमें फिटनेस संबंधित अगर गाड़ी की फिटनेस सही नहीं है और फिटनेस सर्टिफिकेट है तो फिटनेस भी उसको कैंसिल करते हैं, तो इस तरह का हम फिर उसमें बाद में कार्रवाई करते हैं।
1: हाँ, कई बार ये होता है ना कि गाड़ी का अगर फिटनेस नहीं है, उसका मान लो स्टीयरिंग फेल हो गया या कोई ऐसी बात हो गई गाड़ी की मैं कमी थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिक्चर में आता होगा मेरे
0: हाँ
1: जाता।
0: यस, उसमें हम जब, मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि जब बड़े एक्सीडेंट होता है, माइनर एक्सीडेंट में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते, मेजर एक्सीडेंट में ही डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है एक्सीडेंट मैटर्स में।
1: ओके। तो चलिए, इतनी अच्छी बातें हमारी अग्रवाल साहब से हो रही हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक यहाँ रुक के एक अग्रवाल साहब की पसंद का गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: वेलकम बैक अग्रवाल साहब। अब थोड़ा सा आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और जो आपका कार्य किया है आपने प्रशासनिक, उसके बारे में आते हैं, बातचीत करते हैं। आपको कई बार मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मेरिट सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, तो ऐसा आपका कार्यशैली ऐसी क्या थी कि आपने सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज किया और आपको मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह दिए? ऐसे किस कार्य के लिए मिला था पहले तो ये बताइए।
1: आलोक जी, इसमें तो कोई ऐसा विशेष तो कारण नहीं था। एक्चुअली क्या, मैंने मोटर व्हीकल एक्ट को अच्छे से स्टडी किया, तो उसका मेरे को एक्सपर्टाइज काफी अच्छा है। वो अभी भी काम दे रहा है,
0: अच्छा,
1: कंसल्टेंसी में इसमें अभी भी बुक कर रहा हूँ।
0: अच्छा
1: और मैंने क्या कि हेडक्वार्टर पे भी काम किया है, रूल्स के ड्राफ्टिंग भी की है, और फील्ड में भी काम किया है। मेरे को मतलब सभी सभी फील्ड में, ट्रांसपोर्ट में काम किया हुआ है मेरा। और
0: अच्छा
1: फिर क्या है कि मेरी जो मतलब फ्रैंक भी हूँ, थोड़ा बोल्ड, मतलब मेरी जो वर्किंग स्टाइल है कि रूल के हिसाब से काम करने की, तो उससे क्या है कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहा हूँ। और ये मेरा ट्रांसफर भी इसलिए बहुत ज्यादा होता है कि मैं क्वालिफिकेशन की बातें इतनी नहीं मानी तो मेरी ट्रांसफर भी हर साल में हो जाया करते थे। लेकिन उस पर मुझे एक
0: अच्छा
1: ये भी रहा, मुझे एक एडवांटेज की मुझे एक मतलब

0: बात तो है। तो
1: थैंक
0: अब ये बताइए कि टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सर्विसेज, ये चल मैं आपसे एक डायरेक्टली सवाल पूछता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अब ये दबी ढकी बात नहीं है कि किसी ना किसी रूप में करप्शन हमेशा से रहा है, मिडिलमैन कल्चर इसमें रही है, एजेंट्स रहे हैं, सब कुछ रही है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सर्विसेज आने से कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, कुछ करप्शन का लेवल कम हुआ है, कोई एजेंट्स की इंटरफेरेंस कम हुई है, क्या हुआ है, कुछ आपका क्या विचार है इसमें?
1: आलोक जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमने 56 सर्विसेज जो हमारी जो हैं, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट वगैरह की, टैक्स वगैरह की, तो हमने ऑनलाइन कर दी है और उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो करप्शन तो जब होगा जब वो आरटीओ विजिट करे। और फिर पर हमारे क्या कि पब्लिक क्या है कि जो है वो आईटी सेवे नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, तो वो उसको जो इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। फिर वो ऑफिस जाते हैं, एजेंट्स को पकड़ते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जैसे है प्रोसेस, तो नए नए रजिस्ट्रेशन में उसको डीलर के यहीं रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो,
0: ठीक
1: उसको
0: है,
1: ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा,
0: ओके,
1: हमारे 90% जो गाड़ियां हैं वन टाइम टैक्स से कवर हो गई। मतलब हमने उन गाड़ियों को दोबारा टैक्स जमा कराने के लिए हर साल पहले जाना पड़ता था, वो जाने की जरूरत ही नहीं है।
0: सही बात है।
1: वो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम ही उनका वन टाइम टैक्स जमा हो जाता है। तो इसलिए अब हमने ज्यादातर केसेस में उसको केवल जो बसेज हैं, ट्रक्स हैं, यही वन टाइम टैक्स जमा नहीं कराती है, बाकी छोटी गाड़ियां सारी उसमें आ गई। लाइसेंस में भी हमने बहुत तो इम्प्रूव किया है, परमिट में भी इम्प्रूव किया है। तो ऑनलाइन से मतलब ऑनलाइन टैक्स में अब करप्शन तो क्यों है कि पब्लिक आईटी सेवी नहीं है, प्रॉब्लम यह है। अगर वो जैसे, लेकिन मैं इसमें एक ये निवेदन करना चाहूंगा कि कई स्टेट्स ने परिवहन सेवा केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो वहां क्या है कि जैसे पासपोर्ट में आपने देखा होगा कि बैकएंड पे तो वो डिपार्टमेंट वाले बैठते हैं, पासपोर्ट वाले, बाकी प्राइवेट कंसल्टेंसी कंपनी वाले बैठते हैं,
0: हाँ, टाटा वाले बैठते हैं, TCS वाले बैठते हैं। हाँ
1: फ्रंट एंड पे बैठते हैं। ये
0: हाँ
1: हमने उनको सजेशन, जब मैं डिलोइट में था तो हमने ये उनको ये सजेशन दिया था, तो किसी किन्हीं कारणों से ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। वैसे कई स्टेट में परिवहन सेवा केंद्र बने हुए हैं, तो वहां
0: ओके
1: पर एक नॉमिनल फीस 50-100 रुपए में वो सारी सर्विसेज अवेल कर लेते हैं।
0: ओके
1: दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है। ये हमने उनको गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया था, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। गवर्नमेंट का ये व्यू था कि भाई ई मित्र केंद्र से ही करवा लेंगे काम, जब ई मित्र केंद्र वाले इतने एक्सपर्ट नहीं होते ये
0: नहीं
1: सर्विस
0: होते,
1: देने के
0: नहीं
1: लिए।
0: होते, नहीं। अग्रवाल साहब, ये तो आपका सजेशन बहुत मुझे पसंद आ रहा है कि अगर जिस तरह से पासपोर्ट के लिए TCS हैंडल कर रही है और बहुत अच्छा सिस्टमेटिक काम है उनका, ऑर्गेनाइज भी है, तो उस तरह का अगर कोई ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विसेज हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत समस्याएं दूर हो जाए। बात तो सही है आपकी। और लेकिन थोड़ा सा एक जनता का, श्रोताओं, जनता का भी ये परसेप्शन है कि हम लोग एक बार भी चक्कर नहीं लगाना चाहते और हम चाहते हैं कि घर बैठ के ही हमारा लाइसेंस और RC बन के आ जाए, सारा काम हो जाए। तो हम कई बार खुद जानकर एजेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जिससे हमें बिल्कुल ही करना पड़े। ये एक दिक्कत है। इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? क्या पब्लिक अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जा सकती है अग्रवाल साहब?
1: पब्लिक तो उसमें देखो सिंपल सिस्टम, एक के लिए हमने प्रचार प्रसार भी इतना वो बजट नहीं होता, गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार भी नहीं, लेकिन parivahan.gov.in की एक साइट है सर,
0: अच्छा,
1: उस साइट पे आप स्टेट चूज करिए, आरटीओ चूज करिए, फिर आप सर्विसेज ले लीजिए। तो जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि 56 सर्विसेज हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, तो उसको आरटीओ विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे उसका काम हो सकता है। लेकिन पब्लिक को इतना पता नहीं रहता।
0: सही बात। तो चलिए, अब आपको क्या लगता है, जैसे चलिए आप तो और कंसल्टेंसी वगैरह भी कर रहे हैं, ये आगे आने वाले समय में क्या डिजिटल रिफॉर्म्स हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं?
1: डिजिटल रिफॉर्म तो इसमें जैसे अभी हमने जैसे आपको अभी बताया जैसे कि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की अब हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। अब ये मतलब आपको इसको सॉफ्ट कॉपी से ही काम चल जाएगा। मतलब आपको स्मार्ट कार्ड के पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, वापस उसको कलेक्ट करने के लिए ऑफिस भी जाने की जरूरत नहीं है, और वो आपको ये वहीं से मिल जाएगा। फिर हमने इसमें डिजिटल में ये कर रखा है कि चालानिंग जो सिस्टम है जिसमें हमारा मेजर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, करप्शन के है, उसको भी हम आईटीएमएस सिस्टम से कवर कर रहे हैं, मतलब

0: लग जाएंगे जगह जगह, वो कैमरे
1: जी
0: से ही उनकी जो नंबर प्लेट की वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। तो
1: ओके
0: उस
1: ओके
0: ANPR टेक्नोलॉजी से उसका मतलब गाड़ी का वो फेच हो जाएगा, और सिस्टम से वो जो वाहन सॉफ्टवेयर है उससे उसका पता पड़ जाएगा कि गाड़ी का परमिट है नहीं है, लाइसेंस मतलब
1: ओके ओके
0: पोल्यूशन है नहीं है, फिटनेस है नहीं है,
1: अच्छा
0: तो उसका
1: अच्छा
0: चालान
1: अच्छा
0: मतलब बिना इंस्पेक्टर की प्रेजेंस के ही बन सकता है चालान। तो वो
1: ओके
0: हम इस पे जा रहे हैं कि तो उसे ये करप्शन भी रुकेगा, और चालान सारे हमने ऑनलाइन कर दिया, मतलब वो मतलब मैनुअल नहीं बनाते चालान, उसको ये चालान हो गया वो
1: ई
0: सारा,
1: चालानी लचना
0: और
1: आज
0: ऑनलाइन ही
1: आया।
0: पेमेंट, चालान का भी पेमेंट ऑनलाइन होगा, वो नगद पैसा लेता
1: हाँ
0: नहीं है।
1: आज ही अखबार में आया था कि वो पॉज मशीनें हम इनको ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी दे रहे हैं, उनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी चालान का, तो उसके बारे में आया था। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, इसी आशा के साथ हम एक नया गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक अग्रवाल साहब। अब आते हैं आपके असली जो मिशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद अब डेलोराइट इंडिया के साथ और कंसल्टेंट के रूप में काम करना, ये अनुभव आपको कैसा रहा एक इस तरह की प्रोफेशनल एजेंसी के साथ, क्योंकि आप अभी तक सरकार के साथ काम कर रहे थे, तो इसमें क्या फर्क लगा आपको?
1: इसका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डिलोइट से एक बिग फोर, डिलोइट के बारे में बताना चाहूंगा कि बिग फोर कंसल्टिंग कंपनी है वर्ल्ड की, और
0: हाँ
1: कंसल्टिंग में इसका बड़ा नाम है। तो मेरे को इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इसने, मैंने राजस्थान की बीपीआर बनाई और हिमाचल की बीपीआर इससे बनाई,
0: अच्छा।
1: और अभी भी मैं डिलोइट से मतलब लिंक हूँ। तो इसका डिलोइट का मुझे अच्छा, मैं कुछ छोटे से एक दो एग्जांपल बताना चाहूंगा कि हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी में लोगों को बेनिफिट हुआ। जैसे
0: जी
1: एक मैं बताता हूँ कि पहले जैसे गाड़ी की जो कीमत होती, कोस्ट, हमारा टैक्सेशन सिस्टम है वो गाड़ी की कीमत पे डिपेंड करता है। तो
0: जी
1: कीमत पहले जो कोस्ट डाली, कोस्ट है सिस्टम में, हमें मैन्युअली फीड करनी पड़ती थी कंप्यूटर पे। हमने
0: ओके अच्छा
1: उनको उनको राय दी डिपार्टमेंट को कि भाई आप मैन्युफैक्चर कोड देता है, मैंने वो होमोलोगेशन हमने करवा दिया। तो मैन्युफैक्चर जैसे मारुति है, तो मारुति की जो जितने भी मॉडल्स है वो उसकी कॉस्ट वो उसमें सिस्टम में डाल देता है, तो हमें मतलब फीड करने की जरूरत नहीं होती। मैनुअली गलतियां होती थी, तो
0: अच्छा
1: उसका तो उससे तो एरर के चांसेस मिट गए, मतलब अंडर रिक्वायरी के जो ऑडिट वगैरह सब सब लफड़ा खत्म हो गया, मतलब और उसमें जो
0: अच्छा
1: एक्चुअल टैक्स इम्पोज हो गया,
0: ओके ओके, मैं
1: उससे
0: समझ
1: रिवेन्यू
0: गया
1: काफी बढ़
0: आपकी
1: गई,
0: बात।
1: डिपार्टमेंट की रिवेन्यू बढ़ी थे। इसी तरह से
0: अच्छा
1: जैसे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वगैरह है, जेसीबीज है, इनका रजिस्ट्रेशन होते नहीं थे और ये
0: अच्छा
1: माइनिंग एरिया में चलती रहती थी बिना रजिस्ट्रेशन पे,
0: हाँ बिल्कुल
1: और
0: ऐसे ही
1: एक
0: चलती
1: एक
0: है,
1: गाड़ी पे
0: बिल्कुल
1: काफी पैसा बाकी रहता था। टैक्स जो 1.5-2 लाख रुपए टैक्स बनता था ये रिकवर नहीं होता था। तो इसका हमने ये क्या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, जहां भी हमें लूपहोल्स लगे कि जहां टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन ले उसी टाइम हम पूरा वन टाइम टैक्स रिकवर करने लग गए। जी हमारी,
0: ओके
1: हमने इनको रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, उससे ये हो गया। इसी तरह
0: अच्छा
1: और भी कई ऐसे सुझाव थे जिससे मतलब मुझे बड़ा अच्छा, इससे अच्छा अनुभव लगा मतलब।
0: दैट रिमाइंड्स मी अग्रवाल साहब, मेरे को एक ये गांव वगैरह में हाईवे के आसपास हम जाते हैं तो वहां जो ये ट्रैक्टर्स हैं ये तो बिल्कुल ऐसे फ्री स्टाइल में सारे घूमते रहते हैं, ज्यादातर तो मैंने देखा है, और इन पे ना तो कोई नंबर प्लेट ढंग से दिखती है, और इनका रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है? ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स क्या माफ है टैक्सेस से, क्या है इनका चक्कर?
1: नहीं, ट्रैक्टर को तो अब बिना ना, अब तो वो पहले पुराने ट्रैक्टर होंगे सब, वो अब तो नए ट्रैक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के बाहर नहीं जा सकते। मतलब
0: ओके
1: वो जब परचेजर को जब भी मिलेगा, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जैसे उसमें रिफ्लेक्टिव टैप वगैरह ये नहीं लगती, तो उससे वो क्या है कि एक्सीडेंट के कारण बनते हैं रोड पे, हाईवे पे, ये आप कह सकते हैं। तो उसमें भी इनको प्रयास करने की आवश्यकता है काफी डिपार्टमेंट।
0: मतलब ये भी वन टाइम टैक्स देके ही खरीद सकता है
1: हाँ
0: ट्रैक्टर
1: हाँ
0: आदमी
1: हाँ ये
0: आजकल?
1: मैं, हाँ मैंने कहा ना, जैसे हमने केवल ट्रक बस, जो बड़ी ट्रकें हैं और बड़ी बसें हैं, इनके अलावा
0: अच्छा
1: सारी ही गाड़ियां वन टाइम टैक्स देके खरीद सकता है।
0: ओके ओके, क्योंकि ये तो कुछ बहुत ही एकदम फ्री स्टाइल घूमते रहते हैं और ना तो इनमें लाइट ढंग से जलती है ना कुछ करती है, और काफी के एक्सीडेंट्स होते ही हैं इसकी वजह से, हम देखते ही हाईवे के आसपास। तो आप अग्रवाल साहब राजस्थान ट्रांसपोर्ट पेंशनर सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं, तो इस संस्था के मामले से आप थोड़ा रोड सेफ्टी के बारे में बताइए, इस पे किस तरह से आप काम कर रहे हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं?
1: एक्चुअली ये जो है, हमारे 70 मेंबर्स हैं इसमें, दो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं,
0: हाँ
1: हमने ये सोचा कि भाई डिपार्टमेंट को मतलब हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो
0: ठीक है
1: हमने भी ये सेवा के लिए भाई कि इसमें हम लोग क्या, इसमें एक ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बना रखा हमने, डॉक्यूमेंट्री टाइप का, तो 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। तो
0: अच्छा।
1: हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जैसे कॉलेजेस वे स्कूल, बड़ी हायर स्कूल्स है उसमें जाते हैं, और उनको बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं और ट्रैफिक के नियमों के बारे में उनको अवेयर करता है, हमारा मेन उद्देश्य तो ये है। इसके
0: अच्छा
1: अलावा मैं काफी इसमें जैसे हम डिपार्टमेंट में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें भी हमें बुलाया जाता है। मतलब इसके एक एनजीओ, हमने हमारा जो एनजीओ है इसमें इम्पोर्टेंट वो है, ट्रांसपोर्ट पेशनर्स सोसाइटी
0: अच्छा
1: फॉर रोड सेफ्टी अवेयरनेस के नाम से एक हमने एक एनजीओ बना रखा है, तो उसका मैं
0: अच्छा।
1: राजस्थान का अध्यक्ष भी हूँ। तो
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोगों ने ये कि जब हाई लेवल पे जब मिनिस्टर्स या कमिश्नर लेवल पे मीटिंग होती है उसमें भी हम अटेंड करते हैं, सेमिनार को कॉन्फ्रेंसेज होती है, वर्कशॉप होती है, उनमें भी अटेंड करते हैं। और समय समय पे हम गवर्नमेंट को इसमें रोड सेफ्टी सिनेरियो इंप्रूवमेंट करने के लिए हम अपने रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं।
0: अच्छा, तो क्या बच्चों को आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके उनको अवेयरनेस फैलाते हैं? दूसरा क्या, कभी कभी बच्चों को लेके इधर भी आते हैं चौराहे वगैरह पे या क्रॉसिंग पे, उनसे लोगों को समझाने के लिए या उनको समझाइश करने के लिए जो लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, ऐसे कोई बच्चों को लेके जाते भी है उन बच्चों को, स्कूल वालों को आगे भी
1: नहीं, इस तरह ये हम नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस करते हैं। हम लोग तो वहीं तक ही सीमित है कि जहाँ कॉलेज और स्कूल वगैरह में ही हम हमारा प्रोग्राम होते हैं, रोड पर नहीं लेके आते बच्चों को।
0: क्योंकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज सा दिखता है, क्योंकि देखते हैं कि मेजर चौराहों पे जो बड़ी सड़कें हैं उन पे तो फिर भी लोग हेलमेट लगा लेते हैं, लेकिन जो गली कूचों के अंदर लोग होते हैं वहां तो कोई हेलमेट लगाता ही नहीं है आजकल, ये बात है।
1: इसके बारे में मैं एक ये बताना चाहूंगा कि सभी ये मानते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब जनरल पब्लिक का ये रहता है कि मैं बिना हेलमेट चलता रहा हूँ आगे भी मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक बताता हूँ, एक छोटी सी गलती आपकी जानलेवा साबित होती है कि कभी भी इन सुरक्षा मामलों में चूक नहीं करनी चाहिए हमें, मतलब हमेशा ही ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए।
0: चलिए, तो इसी जो हमारी सड़क दुर्घटनाएं और उनसे बचाव और सुरक्षा, जीवन में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, सबसे अहम अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है। तो इसी बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं। करीब करीब हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं और अब थोड़े से सवाल और हैं मिस अग्रवाल साहब।

0: अब अग्रवाल साहब, थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ आते हैं। आपने बताया कि आपकी पत्नी रेनू अग्रवाल जी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी चुनौती के बावजूद बेहद पॉजिटिव जीवन जी रही हैं, तो ये किस तरह से आपने उनको सपोर्ट करते हैं, और क्या आप लोग दोनों को क्या खास एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी लाइफ नॉर्मल रहे, कुछ इसके बारे में बताइए। हाँ, अगर बताना चाहें आप
1: हाँ
0: तो, थोड़ा सा व्यक्तिगत
1: सर,
0: सवाल है।
1: डेफिनेटली सर, मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो मेरे वाइफ को भी मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो उन्होंने अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि मतलब कि मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा,
0: हाँ बताइए
1: हाथ
0: सर।
1: पैरों की स्ट्रेंथ है, मसल्स उनके हाथ पैरों की स्ट्रेंथ की मसल बिल्कुल खत्म से हो जाती है। वो उठाना बैठाना पड़ता है, सारा काम कराना पड़ता है। तो
0: ओके
1: फिर लेकिन वो बड़ी पॉजिटिव है, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम सारे सोशल प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, किटी अटेंड करते हैं, घूमते हैं, और सब मतलब सिनेमा भी जाते हैं,
0: ओके
1: मार्केट भी
0: अच्छा
1: जाते
0: अच्छा
1: हैं। तो वो
0: अच्छा
1: मैं मतलब वो बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए इस चीज को लेके।
0: बहुत बहुत ये इस तरह का सपोर्ट अपने पार्टनर का मिल जाए अगर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए, इस बात पे भी हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, लेकिन उससे जो आप ये एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जो ट्रेवलिंग करते हैं, कोई खास जगह ऐसी जो आपकी फेवरेट हो जहां आप जाना पसंद करते हो, जयपुर में या कहीं विदेश में या देश में, कहाँ कहाँ कहाँ आपने ट्रेवलिंग कर ली है?
1: सर मैंने करीब पूरा अभी 2-3 साल में करीब कश्मीर, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,

0: गुजरात मतलब बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रेवल कर लिया, करीब करीब इंडिया के सभी पार्ट्स में, और मुझे अच्छा लगता है। और एक्चुअली हमें सब जगह हेल्प भी मिल जाती है, जैसे लंबे टूर तो हम जो हवाई जहाज से गए, तो एयर होस्टेस वगैरह मतलब हर जगह का हमें सपोर्ट मिलता है।
1: सपोर्ट
0: ऐसा
1: मिल जाता
0: हमें व्हील चेयर को लेके बल्कि बल्कि फायदा ही रहता है कि जैसे कहीं भी एंट्री होती है तो प्रेफरेंस इनको मिलती है, तो कोई मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं इसमें।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। वो थोड़ा सा व्हील चेयर से आपको प्रेफरेंस भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है। लेकिन ये आपने बताया कश्मीर, आसाम और कहाँ कहाँ आप उनको घुमा लाए, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत ही एक साधुवाद होना चाहिए आपका, बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है साहब। इतनी डिफिकल्टी के बावजूद आप उनको लेके जाते हैं, ये तो बहुत ही आपके अंदर जीवटता है, यही कहना चाहिए।
0: नहीं वो भी
1: तो
0: पॉजिटिव है सर, इसलिए मैं ये कर पाता हूँ कि वो
1: हाँ,
0: पॉजिटिव काफी है।
1: ये बहुत बात है। उनका उनका उनका पॉजिटिव रहना और उनका जाने के लिए तैयार रहना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, कई बार तो इंसान ऐसी बीमारी में, डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी इच्छा ही नहीं करती है कहीं जाने की। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो चलिए, इस जीवटता के नाम पे और इसी उत्साह के नाम पे जो मिसेज अग्रवाल में, हम रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को रैप अप करते हैं।

0: हाँ अग्रवाल साहब, तो अब ये बताइए कि खास तौर से चूंकि आप आजकल रोड सेफ्टी पर काम कर रहे हैं, तो अंत में हमारे श्रोताओं और विशेषकर युवाओं और वाहन चालकों के लिए आप कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बात कहना चाहें जिससे कि वो जब भी सड़क पर जाएं तो अपने आप को सुरक्षित रखें, खुद को भी रखें और जो दूसरे लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखें, तो उनके लिए कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है।
1: सर, इस पे मैं युवाओं ड्राइवर्स के लिए जो आपने कहा है कि सेफ ड्राइव करिए, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, तो आप ट्रैफिक का रूल को फॉलो करिए। और उस पे आपको दो चीजों का बेनिफिट है, एक तो चालान आपका नहीं होगा कभी, मेंटल पीस भी रहेगी और आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं और उसमें और स्पीडिंग करते हैं तो आप 10 मिनट पहले तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। तो आप ट्रैफिक के नियमों को पालना करना ही आपके लिए समझदारी का काम है। इसके अलावा मैं यूथ को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, आईटी सेवी बने, हार्ड वर्क करें, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यूथ को मैं एक ये एडिशनल मेरा मैसेज भी देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जो रोड अवेयरनेस की कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अगर किसी तरह से हम लोग उससे जुड़ सके तो हमें बेहद खुशी होगी। बताइएगा अगर ऐसा कोई संभव हो तो, क्योंकि हाँ कोई क्योंकि
1: डेफिनेटली
0: उसका
1: अगर
0: कोई
1: आपके कोई
0: पब्लिसिटी करनी हो रेडियो पे या कोई ऐसा काम करना हो, कुछ उसके लिए प्रमोशन करना हो, कुछ
1: डेफिनेटली
0: बताना हो तो आप बताइएगा।
1: आलोक जी, हमारी बड़ी सुंदर डॉक्यूमेंट्री है, वो लोगों बच्चों को बड़ी पसंद आती है, बड़ी इंफॉर्मेटिव भी है। और
0: हाँ
1: तो मतलब आप कभी किसी आपके कोई परिचित के मिल कोई स्कूल कॉलेज वगैरह में कोई प्रोग्राम होना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली वहाँ आएंगे और हमें अच्छा लगेगा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, आज की इस विशेष बातचीत में हमने जाना कि किस तरह एक संवेदनशील, दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यकाल में सिस्टम को बदलने की दिशा में सार्थक प्रयास करता है। श्री जीडी अग्रवाल ने जी ने न केवल ट्रांसपोर्ट विभाग में तकनीक और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी रोड सेफ्टी अवेयरनेस के माध्यम से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर, आपके अनुभव, विचार और प्रेरणादायक जीवन यात्रा हमारे श्रोताओं के लिए आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने हमें समय दिया।
1: आलोक जी, आपको भी धन्यवाद और श्रोताओं को भी धन्यवाद, उन्होंने ये सब मेरा सुना। थैंक यू वेरी मच।
0: तो श्रोताओं, यदि आप वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए, सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सुरक्षित सफर ही सबसे महत्वपूर्ण सफर है। इसी संदेश के साथ मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए रेडियो SN। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ कहीं का, उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, है मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

0: क्या बात है।
1: यार, वाह वाह वाह।

वाह बहुत अच्छे।

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे, लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना प्रसिद्ध होने वाला है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए यह विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएन सिप्पी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा संगीत बनाने के अलावा रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे ना याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं ये प्रसिद्ध जोड़ी आनंद मिलिंद की। आनंद मिलिंद हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। प्रतिभाशाली संगीतकार चित्रगुप्त के ये दोनों बेटे आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त अपनी शुरुआती दौर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक रहे।

अपने पिता के सहायक के तौर पर भी उन्होंने कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया। आइए सुनते हैं उनकी बनाई हुई तर्ज पर ये गीत।

उनकी पहली सफल हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक थी। बस इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म आमिर खान की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म का गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उदित नारायण जी ने गाया था। इस फिल्म के संगीत के लिए आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। चलिए सुनते हैं यही गीत।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अगर 60 का दशक म्यूजिक के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो 80 और 90 के दशक को अब भी इसकी सुरीली धुनों के लिए याद किया जाता है। इस जोड़ी ने अब तक 200 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दे दिया है।

उनकी सबसे पहली फिल्म थी 1982 में अब आएगा मजा। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें फारूक शेख और अनीता राज ने काम किया था। इसके कई गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि इस फिल्म के संगीतकार आनंद मिलन हैं, बस लता जी के आशीर्वाद से इनकी डिमांड बढ़ती चली गई।

उदित नारायण की आवाज इन्हें शुरू से ही पसंद थी, तो इसलिए इनके ज्यादातर गाने उदित नारायण जी ने ही गाए। और दूसरी गायिका थी अलका याग्निक। अलका याग्निक भी इनके संगीत पर बराबरी से गाती रहीं। चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक और गीत।

गोविंदा की दूल्हे राजा और कुली नंबर वन जैसी फिल्मों के गाने सुनने में बड़े हल्के फुल्के से लगते हैं, लेकिन ऐसे गाने संगीतबद्ध करना बहुत ही मुश्किल होता है।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। रेडियो एसएन और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर और आप सबका खैर मकदम करती हूं आज के इस नए सफर में जिसका नाम है अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि उन जज्बातों की महफिल है जो हम सब के दिल में कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, कभी किसी की याद बनकर तो कभी किसी अधूरी कहानी की तरह। ये एहसास हमारे साथ चलते ही रहते हैं और गजल उन्हीं एहसासों की सबसे खूबसूरत जुबान है, जहां हर लफ्ज एक कहानी कहता है और हर सुर दिल को छू लेता है। तो आइए आज की इस हसीन महफिल में हम साथ मिलकर महसूस करते हैं कुछ अनकहे अल्फाज और कुछ गहरे से एहसास। इन आंखों की मस्ती के आगे हर जामे शराब भी फीका है, इन आंखों की मस्ती के आगे हर जामे शराब भी फीका है। मोहब्बत करने का हमने बस इन्हीं से तो सलीका सीखा है, वो देखें तो कयामत है, वो ना देखें तो हसरत है। इन्हीं के दम से दुनिया में हर एक दिल की हिफाजत है। दोस्तों, मेहदी हसन साहब की आवाज में जो ठहराव है वो हमें उन आंखों के तस्वुर में ले जाता है जिनमें हया भी है और सदियों का इंतजार।

गहरे समंदर में। तो सुनिए मेहदी हसन साहब की ये नायाब प्यार भरे दो शर्मीले नैन। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। मेहदी हसन साहब।

घर की दीवारों पर क्या क्या लिखा है हसरत ने? घर की दीवारों पर क्या क्या लिखा है हसरत ने कि जब से तुम गए हो हर कोने में तन्हाई का साया बिखरा है। दुनिया की इस भीड़ में कहाँ खो गए हम रस्ते में। अब तो फकत यादें ही बची हैं इस जिंदगी के बस्ते में। दोस्तों, जुदाई का दर्द वही समझ सकता है जिसने किसी को पूरी शिद्दत से चाहा हो। जब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें मिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो टूटे हुए दिल आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। लोग अक्सर पूछते हैं कि नींद क्यों नहीं आती। उन्हें क्या मालूम, नींद तो उन आंखों के साथ ही चली गई जो कभी हमारा ख्वाब हुआ करती थी। इन अल्फाजों में जो दर्द है वो सिर्फ शायरी नहीं है, वो हर उस शख्स की दास्तां है जिसने मोहब्बत में हिजर को झेला हो। तो आइए रोते नहीं हैं बल्कि उन यादों को महसूस करते हैं। सुनिए ये बहुत उदास सी गजल जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम।

दिल में कुछ ख्वाब थे, आंखों में कुछ यादें थीं। हम गुजरते रहे बस एक सफर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मिले हैं मगर असर की तरह। दोस्तों, कुछ यादें कुछ मुलाकातें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ रहती हैं। शायर कहता है, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इजहारे ख्यालात का मौका दे दे, और फिर भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था, सिर्फ दो चार सवालों का मौका दे दे। अब सुनिए गुलाम अली साहब की आवाज में ये पुरअसरार सी गजल। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे।

हंसी होंठों पे सजी है, हंसी होंठों पे सजी है, मगर दिल उदास है। कोई राज है छुपा जो अभी तक अनकहा सा है। नजरें झुकी झुकी हैं, बात कुछ और कहती हैं। ये जो सुकून दिखता है, अंदर कहीं तूफान सा है। शायद हर मुस्कान के पीछे एक खामोश कहानी होती है। कभी कभी चेहरे की हंसी दिल का हाल नहीं बताती। कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो लफ्जों में नहीं ढल पाते। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक ऐसे ही एहसासों से भरी ये गजल जगजीत सिंह जी की आवाज में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। सुनिए ये खूबसूरत गजल।

दोस्तों, कुछ बातें अगर धीरे से कही जाए ना तो दिल तक और गहराई से पहुंचती हैं। जैसे तेरी आवाज में जैसे कोई नशा सा है, तेरी आवाज में जैसे कोई नशा सा है, हर लफ्ज में छुपा है एक सिलसिला सा। जरा आहिस्ता कहो ये मोहब्बत की बातें, ये दिल भी सुन रहा है, ये मौसम भी गवाह सा है। ऐसे बोलो कि दिल का अफसाना दिल सुने और निगाहें दोहराएं। अपने चारों तरफ की ये दुनिया सांस का शोर भी ना सुन पाए। तो आइए दोस्तों, पंकज उदास की आवाज में ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होंठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे। और आहिस्ता कीजिए बातें, सुनिए पंकज उदास की ये खूबसूरत गजल।

देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो। ऐ देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो। तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा ना बना दे। अगर कोई सूरत भी तो हो खाने दिल की, अगर कोई सूरत भी हो तो खाने दिल की। काबा नहीं बनता तो बुत खाना ही बना दे। बहजाद बहजाद हर गाम पर हर एक सजदाए मस्ती, हर दर को संगे दर जानाना बना दे। बेगम अख्तर की पुरसुकून आवाज में बेजाद लखनवी का ये कलाम सुनिए दोस्तों। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। बेगम अख्तर की आवाज में सुनिए ये कलाम।

दोस्तों कुछ दर्द आवाज नहीं करते, बस खामोशी में गूंजते रहते हैं। दिल की हर बात जुबां तक नहीं आती, अक्सर कुछ सदा बन के फिजाओं में बिखर जाती है। हम भी चुप हैं किसी गहरी सी उदासी में मगर, हम भी चुप हैं किसी गहरी सी उदासी में मगर, एक फरियाद है जय, एक फरियाद है जो दिल में ही रह जाती है। जगजीत सिंह साहब की आवाज में ये उदास सी गजल सुनिए। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। जगजीत सिंह की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां सुनिए।

तो दोस्तों, ये थी आज की महफिल, आवाज अल्फाज से एहसास तक। कुछ लफ्ज थे जो दिल से निकले और कुछ एहसास थे जो आपकी धड़कनों तक पहुंचे। शायद इन गजलों में आपको अपनी भी कोई कहानी मिली हो जैसे, या कोई अधूरी सी याद मुस्कुरा उठी हो जैसे। इस उम्मीद के साथ कि ये अल्फाज आपके साथ देर तक गूंजते रहेंगे, मैं आपकी दोस्त आरती रॉय आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे कुछ नए अल्फाज और कुछ नए एहसासों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: तो दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी ने खेती की तैयारियां कर ली है। बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों में बुआई तक कर चुके हैं और काफी किसान अभी बाजारों में बीजों की दुकानों पर बीजों को खरीदते हुए और अन्य जुताई के सामान को खरीदते हुए अलग अलग बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आप सभी के लिए खेती से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियों को अब तक पहुंचाता रहा है और आज भी हम खेती से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। आइए उससे पहले सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। अभी आपने सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।
1: किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए किसानों ने शिरकत की। इस मेले के जरिए उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीकों

0: लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसानों को नवीन जानकारी तो दी ही गई, साथ ही उन्नत किस्मों के बीज भी दिए गए, जिससे किसान कम समय व कम स्थान में अधिक पैदावार ले सके। इसलिए इस बार मेले का विषय आत्मनिर्भर किसान रखा गया। मेले में देश भर के किसान शामिल हुए और कोविड को देखते हुए मेले में समुचित व्यवस्था भी की गई।
1: मैं विगत 30-35 वर्षों से LLB करने के बाद एक दो साल मैं कचहरी गया, उसके बाद मैं मेरा मन कचहरी नहीं लगा, मैं खेती में लौट आया और खेती में मैं कुछ नए किस्म की बीज जो है डेवलप किया हूँ, जो कि हमारी वैरायटी जो है भारत सरकार में रजिस्टर्ड हो गई है UFR में, और वह वैरायटी उसके साथ साथ जो है भारत सरकार की द्वारा जो अधिसूचित प्रजातियाँ हैं उसको मैं सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके, इसमें हमारे पास 3-3 प्रोसेसिंग प्लांट है सीड का और एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट है आयल का, तो मैं लगभग 50-60 आदमी को जो है अपने गांव में रोजगार दिया हूं और सामाजिक दायित्व भी निभाता हूं, जैसे कोरोना काल में काफ़ी लोगों को राशन देना, चावल दाल बांटना, कंबल बांटना, और मैं अपने गांव के विद्यालय को जो है गोद लेकर के उसको काफ़ी अच्छा हम लोग रिनोवेट किए हैं, जिससे बच्चे जाके पढ़ के उसमें बहुत ही जो है अपने को गुड फील कर रहे हैं। इस तरह से किसान को संपन्न होना चाहिए। मेरा शुरू से एक कंसेप्ट था कि किसान खेती के साथ साथ जब तक जो है उद्यमी नहीं बनेगा तब तक वह सफल नहीं हो सकता। सरकार खेती में बढ़ावा दे रही है, आज हमारे पास इतना गेहूं धान उत्पादन हो जा रहा है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है, इसलिए किसान को अपने उत्पाद को एक उद्योग में बदलना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी को मैं कहूँगा कि वो भी आगे खेती में बहुत बड़ा सेक्टर है, कम पैसे में बिना पूंजी के आप खेती में खड़ा हो सकते हैं, और जगह आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, दुकान महंगी मिलेगी, लेकिन आप खेती में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे कई साथी जो है थोड़े में शुरुआत करके आज जो है कई करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 2-3 करोड़ का टर्नओवर हमारा भी साल का है। और इस तरह से मैं लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेला में जाइए, वैज्ञानिकों के पास जाइए, उनसे सीखिए, प्रगतिशील किसानों के साथ जाइए और फिर उसमें अपना एक लक्ष्य बना करके आगे बढ़िए।
2: खेती इतना साइंटिफिक चीज है और इसमें इतना पैसा है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तो जैसे कि हमारा अगर उदाहरण ले तो मैं कभी खेत पर नहीं गया था, 10 साल का हॉस्टल में गया था, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, उसके बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी में चले गए, रिटायरमेंट के थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले गए, खेती में आए तो काम शुरू किया, उसमें 2-4 साल तो लग गया, लेकिन अगर आत्मा से और मेहनत से काम किया तो आज हम करोड़ों रुपए की गाजर बेचते हैं और कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये इस खेती से ही हुआ है। तो मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आप इस खेती के अंदर आइए और इसको एक उद्योग की तरह समझ के और इसको एक इज्जत का धंधा समझ के तब उस पर काम करें, तो आपको इसमें सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। किसान खुद सक्षम है और उसको कोई भी मदद मिल जाए वो ठीक है, लेकिन वो अपने दम पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि शुरू के 10 साल में मेरे ख्याल में हमने कोई सरकार से मदद नहीं लिया था, और जब मदद की जरूरत पड़ी तो सब्सिडी भी मिली, बैंक से लोन भी मिला, पूसा इंस्टीट्यूट जैसे जैसे हमें बीज का, खाद का, रखने काम करने का, खेती करने का बहुत बड़ा योगदान मिला। कोई भी युवा अगर इस काम को कोई भी नई चीज करना चाहेगा तो सरकार और ये पूसा इंस्टीट्यूट, ICAR जैसे इंस्टीट्यूट बहुत ही मददगार साबित होते हैं।
3: किसान साथियों, आइए सुनते हैं अलग अलग प्रदेशों से आए हुए किसान भाइयों ने किस तरह अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की खेती करके लाभ लिया है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसानों से संपर्क के दौरान नवापाड़ा के कुछ किसानों ने मछली पालन को लेकर हमसे कुछ जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आग्रह किया था, तो आइए सुनते हैं विपिन कैसे मछली पालन करते हैं और कैसे उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा कमाते हैं।
5: विपिन कुमार है, मैं गांव बुटाने के रहने वाला हूं। अब मैं अपने फादर साहब श्री सुल्तान सिंह के साथ मछली व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं और हम अपने फार्म पे ट्रेनिंग कराते हैं, युवाओं की ट्रेनिंग कराते हैं, जो जिसमें फिश ब्रीडिंग से लेके फिश प्रोडक्शन तक बताते हैं कैसे करना है। कोई भी नया किसान उसके साथ जुड़ना चाहे उसको हम पूरा ट्रेन करते हैं। फिर हमने एक नई RS टेक्नोलॉजी लगाई है जिसमें कम पानी में, कम जगह में ज़्यादा मछली पालन कर सकते हैं। जो हम बाहर 30 एकड़ में मछली पैदा करते थे वो मात्र 1200 गज में पैदा कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हाईटेक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, पर उसमें हमें काफ़ी

0: फ़ायदा पहुंचता है। और जैसे कि जो चीज जिस फार्मर के पास कम लैंड है वो उस व्यवसाय को अपना सकता है और उससे काफ़ी लाभ कर सकता है। यूथ के लिए यही फ़ायदा है कि वो जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ें और अपनी जो नॉलेज स्किल्स है उसको बढ़ाएं और अपने आप को रोजगार की तरफ लगाएं। और जो आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई उसके तहत जॉब गिवर बने ना कि जॉब टेकर बने।
1: किसान भाइयों, अभी आपने विपिन जी से सुना कैसे उन्होंने मछलियों का पालन करके अच्छे से लाभ कमाया और साथ ही उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया युवाओं के लिए। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक छोटे से प्यारे से भिली गीत को।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान मेले किसानों को कृषि की राह में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। ये मेला उन किसानों का भी पथ प्रदर्शन करता है जो कृषि के क्षेत्र में नए हैं। हमारे देश के विशेषज्ञों द्वारा किए गए नए शोधों और किसानों की अथक मेहनत का परिणाम है कि हमारा देश कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है।
1: गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा।
2: बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब शाम 6 बजे।
3: किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चर्चा करते हैं मछली पालन के ऊपर। मछली पालन करके हम कैसे अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो आइए सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
4: आइए किस तरह से कर सकते हैं मछली पालन बेहतर तरीके से जानते हैं।

0: शरीर को सही विकास और ऊर्जा के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति हम प्रोटीन युक्त भोजन से करते हैं, जिसके लिए हम अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। एक अनुमान के हिसाब से 100 ग्राम मछली में करीब 22% प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमारे देश में बड़े पैमाने पर मछली का उपयोग किया जाता है। यही वजह है कि भारत में मछली पालन व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही तरीकों से मछली पालन किया जाता है, लेकिन दोनों ही तरीकों में एक बात कॉमन है और वो है पर्याप्त पानी का होना। कम लागत में इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए देसी प्रजाति की मछलियाँ जैसे रोहू, कतला, मृगल को पालना चाहिए, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और ये बहुत आसानी से पाली जा सकती हैं। मछली पालक इस बात का ध्यान रखें कि तालाब की लंबाई पूरब से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, जिसके कारण हवा का बहाव होने से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। तालाब की गहराई उतनी होनी चाहिए जहां सूर्य की रोशनी पहुंच सके। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए मछली के बीज या जीरा तालाब या पोखर में डालने से पहले सफाई करना बेहद जरूरी है। मछली के बीज किसी भी हैचरी से खरीदे जा सकते हैं। मछली के अधिक उत्पादन के लिए प्राकृतिक भोजन के अलावा कृत्रिम भोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सरसों की खली या चावल का कुंडा बराबर मात्रा में उपयोग किया जा सकता है। भोजन प्रतिदिन के हिसाब से डालना चाहिए। 1500 किलो मछली का उत्पादन लिया जा सकता है। केंद्र सरकार मछली पालन के लिए कुल लागत का 75% तक लोन मुहैया कराती है। इस सुविधा को अपनाकर मछली पालकों को काफी हद तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। मछलियां अच्छे से विकास कर रही हैं या नहीं, इसकी बीच बीच में जांच करते रहना चाहिए। यदि मछलियों में किसी प्रकार के रोग या बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो उपचार करना चाहिए। उपचार करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। आमतौर पर मछलियों में होने वाले रोग व बीमारी सेप्रोलग्नियोसिस। लक्षण: शरीर पर रुई के गोले की भांति सफेदी लिए भूरे रंग के गुच्छे का बनना। बैंकियोमाइकोसिस। लक्षण: गलफड़ों का सड़ना, दम घुटने के कारण रोगग्रस्त मछली ऊपरी सतह पर हवा लेने का प्रयास करती है, इसके लिए बार बार मुंह खोलती व बंद करती है। फिश टेल रोग। लक्षण: शुरुआती अवस्था में पंखों के किनारों पर सफेदी आना, बाद में पंखों व पूंछ का सड़ना।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, अभी आपने मछली से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक को और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।

0: पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका मुंहपका यानी FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए।
1: बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: से लाभ के लिए कुछ किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये रासायनिक खाद क्षणिक लाभ देती है और इसके लगातार इस्तेमाल से भूमि बंजर हो जाती है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर किसान जैविक खेती की तरफ वापस जा रहे हैं, वो भी आधुनिक बदलाव के साथ, जिससे लागत में कमी और मुनाफे में इजाफा किया जा सके। हरियाणा करनाल के किसान जगत राम ने भी अपने खेतों में कुछ ऐसी ही अभिनव प्रयोग किए। उनके खुद के बनाए मॉडल में जगत राम जी एक एकड़ खेत से करीब 40 से 50 हजार की आमदनी ले सकते हैं, जिसमें देसी बीज, जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। वे बताते हैं कि वे शुरू से ही खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन साल 2009 में उन्होंने जैविक खेती करना शुरू किया। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले वे भी सामान्य खेती किया करते थे, लेकिन उनके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार होता रहता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। फिर किसी महानुभाव के एक वीडियो ने उन्हें जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया और वे पूरी तरह से जैविक खेती से जुड़ गए। आज वे अपने खेतों में तीन तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देसी गाय के गोबर से बनी खाद, 6 से 8 तरह की हरी खाद, फसल अवशेषों से बनी खाद का उपयोग कर रहे हैं। वे रबी में करीब 40 फसलें व खरीफ में करीब 40 फसलें लेते हैं। इसके लिए वे अंतर फसल विधि का प्रयोग करते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि फसलें आपस में प्रतिस्पर्धा ना करके एक दूसरे के बढ़वार में सहयोग करें। इसके लिए किस फसल के बाद कौन सी फसल लगाई जाए, जगत राम जी इसका खास ख्याल रखते हैं।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों, आइए सुनते हैं सफल किसान की दास्ता। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करते आया है और किसान एक सफल किसान की कहानी हमें प्रेरणा देती है। इस कहानी से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को।

0: मैंने इस काम को बहुत मजबूरी में किया था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, काम में कमी नहीं थी। कुछ बीमारियों की वजह से जैसे मैंने काम बिल्कुल मजबूरी में किया था। मेरा खुद बुरा हाल था, पूरा शरीर मेरा मतलब टांगे जैसे गल चुकी थी, उंगलियों पे मेरे पूरे 10 की 10 उंगलियों पे बैंडेड पट्टियां लगी रहती थी, दिन रात 24 घंटे दो दो तीन तीन बार बदलता था। मैं टूट चुका था, मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। ऐसे ही मेरे घर में भी मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आई थी, मैंने ये काम मरते हुए किया था मजबूरी में। परंतु आज खेती में मुनाफा है या ना है, ये खेती करना मेरा शौक बन गया।
1: वे मानते हैं कि किसान को इस तरह से खेती करनी चाहिए कि उन्हें बाजार से सिर्फ नमक खरीदना पड़े, इसलिए वे अपने खेतों में अनाज फसलें, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, मौसमी सब्जी फसलें, मसाला फसलें, औषधीय फसलें, लगभग हर तरह के फल की खेती करते हैं। इन फसलों को पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलती रहे, इसके लिए जगत राम जी ने 14 देसी गाय पाल रखी हैं। गाय के दूध को बेचकर वे अतिरिक्त मुनाफा भी कमा रहे हैं।
0: सबसे पहले आप छोटा एरिया से, आप अगर आप 5 एकड़ के किसान हो ना, तो सिर्फ आधा एकड़ से परिवार की सहमति के साथ इस काम को शुरू करो और सिर्फ इसमें मुनाफा मत देखना, अपने घर की जरूरत पूरी करो, अनाज दाल तेल सब्जी फ्रूट वगैरह, ठीक, फ्रूट थोड़ा बाद में। ये करते करते करते करते आपके नियर डियर, मैं अपनी कहानी बोल रहा हूँ, मैंने जो किया, ये करते करते आपके नियर डियर को जानने पहचानने वाले आपसे सामान खरीदना शुरू करेंगे, आपके सामान की इज्जत और कदर करेंगे वो लोग, और धीरे धीरे आपको ये नहीं पता चलेगा कब मैंने ये काम शुरू किया और कब इसमें मुनाफा आना शुरू हो गया। और ये बहुत जबरदस्त इस तरीके से करोगे ना, इससे बड़ा कोई भी कमाई कोई उद्योग नहीं है।

0: राम जी का खेती मॉडल उन किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है जिनके पास थोड़ी भूमि है। इसके साथ ही किसान चाहे तो बाजार की नब्ज को समझकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें वे जैविक रूप से तैयार फसलों का प्रसंस्करण कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो खेती में अपार संभावनाएं हैं जो तरक्की की ओर ले जा सकती हैं।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक सफल किसान की दास्तां को सुना। आइए मिलवाते हैं एक और सफल किसान से और सुनते हैं उनकी सफलता की ये कहानी।
2: सिक्स मंथ पहले मैंने ये अपना कड़कनाथ फार्मिंग स्टार्ट की है, जो कि ये आपको बताना चाहूँगा कि कड़कनाथ जो है आपका मध्य प्रदेश झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का ये बर्ड है। तो वहाँ से हम इस बर्ड को जब हमने वहाँ पे एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो एमपी कड़कनाथ को जो इस प्रमोट करने के लिए बनी हुई है उस पर हमने कॉल किया और वहाँ से हमें पता चला कि उन्होंने बोला कि आप आ जाइए वहाँ पे। मैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए गया, मैंने वहाँ पे देखा, मैंने वहाँ पे कुछ दो तीन दिन जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ली, इसके बारे में जाना और यहाँ पर मैंने फिर जो है आपका स्टार्ट किया फार्म आके यहाँ पे। और हमने क्या किया है कि हमारा आशीष कड़कनाथ मुर्गी पालन है मध्य प्रदेश झाबुआ का, जो कि नंबर वन अवार्डेड है मध्य प्रदेश में, और इसके शाखा हमने गाजियाबाद में स्टार्ट की है। गाजियाबाद में स्टार्ट करने के बाद हमारा इसका शाखा का उद्देश्य है कि पूरे देश में हमें चिक्स की और जो ये बर्ड्स हैं इसकी सप्लाई के लिए, तो हमें बड़ी समस्या आती थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो हमने अभी एक तरीके का दिल्ली गाजियाबाद में कैरियर बनाया है, जैसे कि वहाँ से माल पहले यहाँ आ जाता है और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें हम चिक्स जो छोटा चिक्स 1 डे ओल्ड, 15 डेज ओल्ड, 30 डेज ओल्ड, फुल साइज मुर्गा अगर चाहिए तो वो सब हम यहाँ पे करते हैं। हम लोगों उन लोगों को पूरा ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि उनको क्या वैक्सीनेशन होती है पूरे और किस तरह से पाला जाए, एक मुर्गी के लिए और 1000 बर्ड्स के लिए कितना स्पेस चाहिए, वो सारा हम ट्रेनिंग में उन लोगों को बताते हैं, इनका खाना सारा चीज़ें। देखिए, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ किसी नए फार्मर के लिए कि स्टार्टिंग में अगर जैसे आपके पास जगह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जगह नहीं है तो आप किसी बने बनाए फार्म को अगर आप रेंट पे स्टार्टिंग में करें, क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा फार्म में पैसा ना लगाएं और धीरे धीरे अगर आप उस फार्म का, जैसे कि इसके हिसाब होता है कि एक बर्ड के लिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, तो अगर आप उसी हिसाब से आपने अपनी बजट के अनुसार बर्ड्स लाइए, जिससे कि आपका जो अगर आप रेंट पे अगर आप लेते हैं स्टार्टिंग में कोई फार्म, तो उसमें आपका लो इन्वेस्टमेंट पे और अच्छा प्रॉफिट आपको आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ लोग किसान इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते हैं कि एक साथ 5 लाख रुपये कहाँ से लगाएं, क्योंकि 5 लाख रुपये की कॉस्ट सिर्फ आपके सेट बनाने में ही आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आप इनिशियली स्टार्टिंग करके आप कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी देखरेख का सवाल है, इसका देखरेख बहुत ही आसान है। इसमें आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि इनको, इनका जो ड्रिंकर है और इनका जो फीडर है, इन्हें एक बार आप दिन में फुल कर दीजिए। उसके बाद ये मुर्गा इस तरह का है कि ये पूरे दिन में अपने हिसाब से खाता रहेगा और अपने हिसाब से घूमता फिरता रहता है, ना तो ये जबरदस्ती खाएगा और ना ये किसी प्रकार का वेस्ट करेगा। तो अभी क्या है कि खाएगा और घूमेगा सुबह। इसमें क्या होता है, फीड्स में आप जो खिलाने की है, जैसे खिलाने के लिए, इसके लिए आप बाहर से, जैसे कि लो कॉस्ट में, जैसे कि आप मंडी वगैरह से या कुछ हरा चारा इस तरह से आप बना के दे सकते हैं। इसकी एक स्पेशल फीड भी बनती है, जैसे कि आप 50% मक्का ले लीजिए और उसके अंदर फिर गेहूं लगा लीजिए 10%, उस तरह से फिर आप इसमें 5% सोयाबीन डाल लीजिए, 5% आप इसके अंदर मछली का जो एक चूरा आता है वो डाल लीजिए, राइस ब्रॉन आता है वो डाल लीजिए इसके अंदर। तो इस तरह से 5-6 आइटम्स का मिला के हम इसका फीड बनाते हैं। जब भी स्टार्ट करें तो ट्रेनिंग लेके इसको स्टार्ट किया जाए, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से आप जाकर ले सकते हैं, और हमारे फार्म पे भी हम यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपको जो जोखिम से बचने में हेल्प मिलेगी, और इसमें किसी प्रकार का मैं नहीं समझता कि कोई जोखिम है, और बहुत ही मुनाफे वाला है इसमें। आप ये समझ लीजिए कि दुगने तिगने पैसे होते हैं, क्योंकि कड़कनाथ एक ऐसा है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में इसकी चाहत है अभी इस समय, क्योंकि कम फार्मर हैं और अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है किसानों के पास। और हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें, और इसको हम एक एक्सपोर्ट लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं, जिससे कि इसकी इतनी डिमांड बढ़ेगी और आने वाले समय में हम इसको, जो हमारा फ्यूचर है वो देख के चल रहे हैं कि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि हम अगर जैसे आपसे किसान से हम बात करते हैं कि आप हमसे एक बात पूछते हो कि हम इसे पाल तो लें, बना तो लें, लेकिन ये बेचेंगे कहाँ। तो इसी लेवल पे अभी गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट कर रही है इसकी अवेयरनेस, पूरे अभी एग्जीबिशन के जरिए और न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में बताया जा रहा है, इसके औषधि गुणों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसे धीरे धीरे इसमें बहुत ही ग्रोथ अच्छी मिल रही है। मैंने खुद 6 महीने के अंदर अंदर अभी तक करीब 5 मैंने फार्म नए फार्मरों के स्टार्ट कर चुका हूं, और उनका बहुत अच्छी तरह से फार्म चल रहा है, जिसमें कि उनको मैं समय समय पे बताता रहता हूं कि क्या वैक्सीनेशन है। यही नहीं कि हमने बच्चा दे दिया उसके बाद भूल गए, हम उनको डे टू डे उनके टच में रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करते हैं। युवा होने के नाते मैं आने वाली पीढ़ी को जो अभी चल रही है उनको ये सलाह दूंगा कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको थोड़ा डेडिकेटिवली करें। जो भी, चाहे आप कोई भी फील्ड में आएँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुर्गी पालन कीजिए, कोई भी फील्ड में आप आएँ, लेकिन उसको मन से करो, अपना समझ के करो।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, आइए डालते हैं एक नज़र झाबुआ के मौसम के ऊपर। तो झाबुआ का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस, और कल की वर्षा 9.6 मिलीमीटर और अब तक की कुल वर्षा 65.5 मिलीमीटर नापी गई है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન, આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમરતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांटियाबिल 90.8 FM आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। और किसान साथियों, आज का हमारा टॉपिक है धरती के रक्षक। हमारे किसान मित्र कौन कौन से हैं और हमारी धरती के रक्षक कौन कौन से हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं एक छोटे से प्यारे से बिली गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कौन है हमारे धरती के मित्र, कौन है हमारे किसान मित्र। आइए करते हैं इन पर चर्चा।
1: बेहतर सेहत की कुंजी जमीन से जुड़ी होती है। जैसी भूमि होगी वैसा ही उससे अनाज मिलता है, यानी मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं और हमें जो अनाज मिलता है उसमें वो तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर पर अच्छा बुरा असर डालते हैं। हमारे देश के किसान इस बात को बखूबी समझ चुके हैं, इसीलिए तो किसान रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक व जैविक खेती को अपना रहे हैं। इस धारा से किसानों को जोड़ने के लिए सरकार भी पहल कर रही है और कई संस्थाएं भी। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जाना जाने वाला पतंजलि संस्थान अब जैविक खेती के लिए भी अहम कदम उठा रहा है। इस समय कई तरह के उर्वरक बनाए जा रहे हैं, साथ ही फसलों में लगने वाले रोगों के लिए भी दवाएं बनाई जा रही हैं। डॉक्टर रामकुमार बताते हैं कि वो मिट्टी की जांच करने के लिए एक किट भी देते हैं, जिससे जमीन की यथास्थिति के बारे में मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जानकारी मिल जाती है।
2: पतंजलि योगा और आयुर्वेद में काम करने के साथ कृषि जगत में भी काम कर रहा है, जिसके लिए हम ऑर्गेनिक क्षेत्र में बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। आज हम 45,000 से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसके लिए पतंजलि बहुत बृहद स्केल पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, जिसमें क्रोम, पतंजलि जैविक खाद, पतंजलि पोटास और उसके साथ नेचुरल एजोटोबैक्टर पीएसबी, राइजोबियम, केएमबी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही डिजीज मैनेजमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बर्टिसिलियम, मेटाराइजियम भी प्रोवाइड करते हैं। नीम ऑयल के प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्गेनिक इनपुट का है और सर्टिफाइड है। जमीन की टेस्टिंग करने के लिए हम धरती का डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, जो 15 से 20 मिनट में आपके खेत में आपके लैब पर ही टेस्टिंग किया जा सकता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन और पीएच हम एक टेस्ट कर सकते हैं।
1: बाजार में इस समय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, इसीलिए भी किसान जैविक व प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। रासायनिक खेती की तुलना में प्रमाणिक जैविक खेती में बुआई से लेकर भंडारण तक में विशेष ध्यान देना होता है। इस तरह की खेती करने वाले किसान प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत होने चाहिए, इसीलिए उन्हें उस संस्था के मापदंडों के हिसाब से ही खेती करनी होती है। इससे गुणवत्ता बनी रहती है और बाजार में उपज का सही दाम भी मिलता है। खेती के पहले राज्य प्रमाणीकरण संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद जब किसान फसल की बुआई करता है तो संस्था के द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
3: जैसा कि आप जानते हैं, अभी जैविक उत्पाद की बहुत डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, लेकिन उसकी सत्यता की, प्रमाणिकता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के द्वारा कृषि उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण किया जाता है, और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को भारत सरकार की तरफ से एज ए रीजनल काउंसिल की मान्यता मिली है कि किसानों के उत्पाद का हम जैविक प्रमाणीकरण करते हैं। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट 5 राज्यों में प्रमाणीकरण का काम कर रहे हैं। इस प्रमाणीकरण से पहले हम किसानों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके रिकॉर्ड मेंटेन कराते हैं और उनके उत्पाद का जैविक प्रमाणीकरण करने के बाद में किसान जो है अपने उत्पाद का मार्केट में अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। इसके लिए हम मार्केटिंग के लिए किसानों को दूसरी संस्थाओं के साथ उनकी टाइप कराते हैं, और आज हमारे साथ करीबन 2,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं जो अपने उत्पाद का उचित मूल्य मार्केट में प्राप्त कर रहे हैं।
1: कुछ संस्थाएं तो किसानों को प्रशिक्षण भी देती हैं। किसान जैविक खेती को अपनाने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में उन्हें अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि ग्राहक को जैविक और अजैविक उत्पाद में कोई

0: शक्ल नहीं समझ आता। ऐसी समस्या का समाधान है प्रमाणीकरण जैविक खेती, जो किसान को उसकी मेहनत का सही दाम अदा करने में सहायक है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ। खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम आगे जानेंगे, उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं प्यारे से भिली भिली गीत को।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, अभी आपने एक प्यारे से भीली गीत को सुना।

0: लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुगर पालन मुनाफे का व्यवसाय साबित हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शुगर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि शुगर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि करीब एक साल में ही इनसे मुनाफा होने लगता है। हमारे देश में कृषि के साथ अगर पशुपालन की बात होती है तो खासकर गाय, भैंस और बकरी का जिक्र आता है, लेकिन कृषि के साथ यदि शुगर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। ये बाकी पशुओं से काफी सस्ता और सुलभ है। कैसे, आइए जानते हैं। अन्य पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुगर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शुगर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शुगर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं। बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। इतनी खूबियों के बाद भी इनका आहार बहुत ही साधारण होता है। शुगर सामान्य तौर पर सड़े फल, सब्जी, अनाज, रसोई घर की जूठन, फार्म या कारखानों से निकला अनुपयोगी पदार्थ खाकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो आयु के हिसाब से शुगर का आहार निर्धारित किया जाए तो बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं। जैसे 1 से 2 माह तक आधा किलो दाना, 2 से 3 माह तक 1 किलो दाना, 3 से 4 माह तक 1.25 किलो दाना, 4 से 5 माह तक 1.5 किलो दाना, 5 से 6 माह तक 2 किलो दाना, गाभिन शुकरी को 2.5 किलो दाना, बच्चों को दूध पिलाने वाली शुकरी को 3 किलो दाना। चारा दाने के अलावा शुकर को हरा चारा जैसे ल्यूसन, मटर, हरी घास, ज्वार भी देना चाहिए, जिसकी मात्रा 1 किलो प्रति शुकर होनी चाहिए। वहीं दाना दिन में 2 बार देना चाहिए, जबकि हरा चारा 1 बार देना चाहिए। बहुउपयोगी शुकर से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए इनका आवास बनाते समय खास ध्यान देने की जरूरत है। आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में सुरक्षा दे सके। आवास के साथ बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शुकर आसानी से घूम फिर सके। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहनी चाहिए। शुकरों को मुख्य रूप से स्वाइन फ्लू, खुरपका मुंहपका, शुकर चेचक, गलघोंटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान या पशुपालक शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। किसान शुकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुकर पालन किया जा सकता है, जो कई गुना लाभ देने में सहायक है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, 90.8 FM। किसान भाइयों, बारिश का मौसम है और आइए जानते हैं पशुओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। हमें पशुओं का ध्यान कैसे रखना चाहिए और पशुओं को इस बारिश के समय में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीजें हमें उन्हें देना चाहिए, कैसा आहार हमें देना चाहिए, आइए जानते हैं इसकी रिपोर्ट के माध्यम से पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
0: बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसीलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30

0: किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें।
1: किसान भाइयों, अभी आपने पशु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटा भील 90.8 FM, झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आइए लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक प्यारे से सुंदर से भीली गीत को सुना, आइए सुनते हैं सफल किसान की दास्ता।
1: प्राकृतिक खेती की सीधी सी परिभाषा है, जिस खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करके गौ आधारित खाद का प्रयोग किया गया हो। मिट्टी की खो रही उर्वरकता और खाद्य पदार्थों में कम होते पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अब किसान प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी उपयोगिता अब जरूरत बनती जा रही है। यही वजह है कि देश भर के करीब 5 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। अलीगढ़ के किसान डॉक्टर गुणाकर खेती और पशुपालन साथ साथ करते हैं। कृषि की इस विद्या को अपनाने के पहले उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से जानकारी एकत्रित की और फिर भूमि सुपोषण के लिए कदम उठाने लगे।
2: अलीगढ़ जिले के एक गांव में मैं पैदा हुआ और वहीं मैं पला बढ़ा। उसके बाद भारत के बहुत सारे शहरों में कई प्रकार के काम करने का मौका मिला। वर्तमान में रसायन मुक्त खेती और गौ पालन ये मेरा व्यवसाय है। रुचि के रूप में युवा और खेती किसानी से संबंधित सामाजिक क्रियाकलाप ये मेरे रुचि के विषय हैं। तो एक अनेक वर्षों तक लगातार प्रत्यक्ष अपने हाथों से खेती करने और भारत के लगभग सभी राज्यों में खेती से संबंधित और गौ आधारित खेती से संबंधित अनेक ऐसे किसान प्रकल्प, उनको देखने के बाद जो मेरी समझ बनी है, मैं आपसे साझा करता हूँ। मेरा मानना है कि खेती ये केवल एकांगी विषय नहीं है, ये तो न केवल सबके पेट भरने का एक तरीका है, बल्कि संपूर्ण जो जीव सृष्टि है उसके लिए खेती है। खेती के जो पहलू हैं, मुझे लगता है कि इसके कम से कम 4 पहलू हैं, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी। और 2 प्रश्न अगर हम करें तो इन 2 प्रश्नों में इन 4 का उत्तर आता है। खेती क्यों की जाए और खेती कैसे की जाए। खेती क्यों की जाए, हम इस पर विचार करते हैं तो लोग खेती जो करते हैं वो भावनात्मक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से और कुछ सामाजिक कारणों से लोग खेती करते हैं। खेती कैसे की जाए, ये इसका एक तकनीकी पक्ष है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। वर्तमान में हमारे सामने 2 प्रकार की नाम आते हैं, एक रासायनिक खेती, एक रसायन मुक्त खेती। तो जहाँ तक रसायन खेती की बात है तो उसका कोई और बहुत सारे नाम नहीं है। रासायनिक खेती का मतलब है उसमें रसायन डालना है, खेती करनी है। और जब रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे नाम हमारे आज ध्यान में आ जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक कृषि है, गौ आधारित खेती है, बैल आधारित खेती है, बायोडायनामिक खेती है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, और भी बहुत सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरागत खेती थी वो पूरी तरह से गैर रासायनिक खेती थी। गैर रासायनिक खेती के आधार पर हम हजारों वर्षों से खेती करते चले आ रहे थे। लगभग 10,000 वर्ष का हमारा ये खेती का इतिहास है। तो अभी वर्तमान में निसंदेह जो आधुनिक विज्ञान है उसके कारण से खेती के बहुत सारे तौर तरीके, पद्धतियाँ हमारे सामने आईं और उसका एक अच्छा और सुखद परिणाम भी हमको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस सुखद परिणाम के साथ में कुछ दूरगामी और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। दूसरे, हम खेती को इस रूप में भी देखते हैं, चूँकि मेरा सामाजिक एक संबंध भी है, अक्षय कृषि परिवार नाम की एक संस्था जो खेती संबंधित सारे विषयों पर पूरे देश में काम करती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि खेती इसके 5 पहलू और जिन पर और अधिक काम होने की आवश्यकता है।
0: वो कौन से हैं 5 पहलू, उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आइए चर्चा करते हैं उन पांच बिंदुओं पर जिन पर टिकी है हमारी कृषि भूमि। कृषि में उन पांच बिंदुओं का ध्यान रखकर कैसे हमारी कृषि को हम उन्नत बना सकते हैं, कि किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारी कृषि करनी चाहिए। आइए जानते हैं उन पांच बिंदुओं को और चर्चा करते हैं उन पर।
2: कहीं कहीं काम हो भी रहे हैं, जैसे कि हमारा परिसर हमारी पहचान। किसान को आज ये बहुत जरूरी है जानना कि उसके आस पास जो वातावरण है वो कैसा है, उसके खेत की मिट्टी कैसी है, वहाँ हवावान कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा रहता है, वहाँ के कीट पतंगे जीव जंतुओं की स्थिति कैसी है, वहाँ का पानी का स्तर कैसा है, वहाँ कितनी वर्षा होती है। ऐसी बहुत सारी बातें ये किसान को जानना जरूरी होता है।
3: डॉक्टर गुणाकर मानते हैं कि खेती एक ऐसा विषय है जिसमें आज भी कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। किसान को अपने आसपास के वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, खेत की मिट्टी की सेहत पता होनी चाहिए जिससे वो अपनी कृषि को लाभ के आयाम पर ले जा सके। इसके लिए वो भूमि के सुपोषण पर विशेष ध्यान देते हैं।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: खेत की मिट्टी की सेहत पता होनी चाहिए जिससे वो अपनी कृषि को लाभ के आयाम पर ले जा सके। इसके लिए वो भूमि के सुपोषण पर विशेष ध्यान देते हैं।
2: तो ये हमारा परिसर हमारी पहचान, इसके अंतर्गत ये जानना जरूरी है। दूसरे, भूमि का सुपोषण। किसान के बारे में कहना चाहूँगा अपने अनुभव से कि भूमि यदि हमारी मजबूत होगी तो हर फसल हमारी मजबूत हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी का क्षरण हुआ है, भूमि का ह्रास हुआ है। कारण उसके चाहे जो भी हो, चाहे रसायन उसका कारण हो सकता है या अन्य जो हमारे जो फसल करने के तरीके हैं वो एक कारण हो सकता है। तो भूमि का मजबूत होना, भूमि का सुपोषित होना ये बहुत ज़रूरी है। और भूमि सुपोषण जो है ये किसान ही कर सकता है। भूमि का सुपोषण इसके लिए निश्चित रूप से हम जब विज्ञान की भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं पीएच उसका निगेटिवली बैलेंस इम्बैलेंस होता है, या फिर उसमें जो कार्बन की मात्रा है मिट्टी के अंदर वो कम हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी कमज़ोर हो गई है। वो सब करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर और जितना अधिक बायोमास हम उसमें प्रयोग करेंगे उतना उसको लाभ मिलेगा। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, अधिक करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सीधे सीधे उसकी बात रहती है। तो उसके प्रयास भी कहीं ना कहीं कम हुए, इसलिए भूमि का सुपोषण ये उसका एक आवश्यक पहलू है। तीसरा रहता है हमारा मनुष्य और पशु चालित यंत्र, क्योंकि यंत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान खेती में है ही। हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ट्रैक्टराइजेशन ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ट्रैक्टर के लाभ अनेक हो सकते हैं, लेकिन साक्षात खेती में हम देखेंगे तो ट्रैक्टर के अनेक प्रकार के नुकसान भी हैं। उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ट्रैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं एक कर्ज का और एक बोझ का कारण खास तौर से छोटे किसान के लिए ये बनकर रह गया। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ पूरे देश में मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि 40% के आसपास किसान आज भी जो है ट्रैक्टर के बिना और पशु आधारित खेती ये देश में करते हैं। तो वहाँ की जो खेती की स्थिति है वो अधिक मजबूत है, वहाँ की जो मृदा की स्थिति है वो अधिक मजबूत है। तो छोटे यंत्र, चाहे वो मनुष्य चलित हों चाहे वो पशु चलित हों, उस पर भी निश्चित रूप से कहीं कहीं काम करने की और होने की आवश्यकता है। तीसरा हमारा एक पहलू आता है कि ये जो हम बात करते हैं फसलों की, तो किसान सामान्यतः खेती करता है और खेती करने के बाद वो फसल को सीधे सीधे जाकर बाजार में बेच देता है। उसके कारण से ये होता है कि उसका जो एक बड़ा लाभ है उससे वंचित रह जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि टिल हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। तो किसान अपना काम केवल टिल हार्वेस्ट करता है, फसल आने तक काम करता है। फसल आने के बाद उसकी छोटा सा छोटा काम करके भी अनेक प्रयोग देश में जो चलते हैं कि उसकी कुछ नहीं है तो उसने शॉर्टिंग ग्रेडिंग कर दी, या फिर उसका कुछ नहीं है तो ठीक से पैकेजिंग कर दी, उतना करने मात्र से और किसान को एक बड़ा लाभ उसमें हो सकता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि उसका एक आर्थिक पहलू, तो तो आर्थिक पहलू पर शायद अधिक ध्यान दिया गया, इस कारण से हमने उत्पादन की ओर ध्यान दिया लेकिन गुणवत्ता हमारी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिगड़ी। तो ये सारी जो समझ हमारी बनी है, इसमें निसंदेह इस समझ को वास्तव में बनाने का काम कुछ व्यक्तिगत लोग बहुत सारे करते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं इस रूप में काम करती हैं और स्वतः संज्ञान लेकर के भी विभिन्न माध्यमों से चाहे आसूस।
3: डॉक्टर गुणाकर मानते हैं कि किसान अपनी फसल से और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर फसल को किसान सीधे सीधे बाजार में बेच देते हैं तो वो अतिरिक्त लाभ को खो देते हैं, लेकिन अगर किसान कुछ बातों का ध्यान रखे तो मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है।
4: किसान भाइयों, अभी हमने सुना उन 5 पहलुओं को जिन पर ध्यान देकर हम हमारी कृषि को और अच्छे से बना सकते हैं, हमारी कृषि के साथ ही साथ हमारे जो आय के स्रोत है उन्हें भी हम सुदृढ़ बना सकते हैं। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं इस प्यारे से मिली गीत को।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, आज हमने खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। रेडियो टांडिया भील आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी हुई और भी जानकारियों को आप तक साझा करते रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांडिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें। आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा सा, क्यूट, मासूम, बेहद खूबसूरत एपिसोड लेकर दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं। और आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं कुमार सुब्रमण्यन। आई स्वेयर, मुझे इस नाम को लेने में ही दोस्तों बड़ा मजा आ रहा है। और आप जब कुमार साहब से सुनेंगे अपने उनके बारे में तो क्या बात है, बिल्कुल सोने पे सुहागा होने वाला है। कुमार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए हमारे।
1: बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे हमारा आदर किया, हमारे गाने सुनने का मौका मिला जी। असली में बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी।
0: वाओ, तो बस हमारे जितने भी सुनने वाले आज इकट्ठा हुए हैं ना आपको सुनने के लिए, थोड़ा सा उनसे बात कीजिए ना, अपने बारे में बताइए, कहाँ हैं आप, क्या करते हैं आप?
1: मैं एक्चुअली आई एम रिटायर्ड फ्रॉम टाटा ग्रुप एंड नाउ आई एम परसुइंग माय पैशन फॉर म्यूजिक। इनफैक्ट म्यूजिक वाज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय लाइफ राइट फ्रॉम माय, इट वोंट बी एन एग्जैगरेशन टू से, राइट फ्रॉम माय एज ऑफ 5-6 इयर्स, उस बचपन से मुझे संगीत म्यूजिक से बहुत ही शौक, बहुत ही लगन था। मेरा जो भी वॉटर विचर इज क्लोज टू माई हार्ट इज म्यूजिक, नथिंग एल्स।
0: ऑलराइट,
1: तो मैं उस जमाने से गाने में और इन म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट, दिलचस्प रखता था मैं।
0: ब्यूटीफुल, आपने अभी अभी बताया कुमार भाई कि आप टाटा ग्रुप से रिटायर हुए, तो टाटा ग्रुप मतलब टाटा के पास तो बहुत कुछ है, गाड़ियों से लेकर नमक
1: तक। टाटा सर्विसेज लिमिटेड एट बॉम्बे हाउस इन देयर ग्रुप लीगल डिपार्टमेंट।
0: ओके, कैन वी से टीसीएस, मतलब
1: TCS ने, टाटा सर्विसेज लिमिटेड एक दूसरा सेपरेट कंपनी था जो टाटा ग्रुप को पूरा वो लोग देवर कैटरिंग टू द नीड्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, लीगल एडवाइस, इकोनॉमिक एडवाइस, ऐसा ऐसे कंपनी फॉर्म किए उधर।
0: वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत खूब। क्योंकि ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए पूछी कुमार साहब, आप कुछ और मत समझिएगा, क्योंकि हम सब
1: नहीं,
0: लोग
1: नहीं, बिल्कुल नहीं,
0: क्योंकि हम सब लोग ना टाटा को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, बहुत ही रिवर्ड कंपनी है। मतलब मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी बंदे ने टाटा ज्वाइन किया और कभी छोड़ा हो, कभी नहीं, आई हैव नॉट हर्ड।
1: सही कहा आपने,
0: एक बार
1: सही कहा आपने,
0: पता नहीं क्या कल्चर उन्होंने क्रिएट किया है कि
1: वो एक उनका एक ब्रांड एंड दैट वेरी रेस्पेक्टेड बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट।
0: करेक्ट, आई मीन दे द पीपल लव टाटा, आई मीन आई स्वेयर दैट।
1: राइट राइट, यू आर।
0: चलो दोस्तों, ये हैं कुमार साहब, और प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैं पेश करता हूं कुमार सुब्रमण्यन सर के गाए हुए ये गीत जो उन्होंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं।

0: ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आगे बढ़ते हुए कुमार साहब, बस इतना सा पूछना चाहूंगा आपको, हम कोशिश ये करेंगे कि आपको समझें और आपके संगीत को समझें, तो आपकी जिंदगी को समझ लेते हैं पहले, संगीत के ऊपर आ ही जाएंगे, आपके गाने हम सुन ही रहे हैं, मजा आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कुमार साहब, जिस वक्त आप छोटे बच्चे थे, अपने बचपन की कोई शानदार शैतानी, कोई शरारत याद है आपको, बताइए ना।
1: शानदार शैतानी तो मैं बहुत था अभी भी जरा जरा झलक झलक अभी भी झलक जरा है उसकी,
0: आपकी आवाज में सुनाई दे रही है,
1: बहुत मस्ती और बहुत सारे मजाक भी करता, नकल भी बहुत करते थे और मजाक बहुत करते थे। आई लाइक टू बी ऑलवेज ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड पीपल, आई लाइक दिट।
0: ओके, तो
1: लाइफ इज, लाइफ शुड बी, या
0: तो कोई शैतानी याद हो तो हमें बताइए ना।
1: शैतानी तो याद है, ऐसे कोई मेरे कोई रिलेटिव को मैंने फोन किया, फोन करके उनको जरा उसको जरा वो बताया कि अरे आप मुझे जानते हैं कि नहीं, आप मेरे बचपन के दोस्त है, तो ही कुडंट रिकलेक्ट इट एंड ही वाज यू नो, तो बहुत हंसी आ रहा था। फिर बाद में वो बहुत परेशान हो गया, घर पे आके बोला कि ऐसे एक लड़का, मैं कोई आदमी मुझे आज बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा बोलता है, मेरे बचपन से जानते नाम बोलता है। तो फिर बाद में आखिर में मुझे उनका सिचुएशन देखे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने बता दिया, मैंने बोल के आपको तो ऐसे बहुत मस्ती बहुत कर रहे थे हम।
0: दैट्स वेरी नाइस। तो देखिए, नहीं, इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी यू नो, बिल्कुल बिल्कुल प्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हार्मलेस है। अगर आपने किसी को फोन किया और आपको लग रहा कि वो परेशान हो रहे हैं,
1: हमारे घर के रिलेशन अच्छे थे आदमी, तो आई नो दैट ही विल टेक इट इन स्पोर्टिंग, सो दैट इज व्हाई
0: ये चीज का ख्याल,
1: नॉट टू एनी स्ट्रेंजर, नॉट लाइक दैट, ही इज नोन, वेरी नोन टू ऑल, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन।
0: तो दोस्तों, जस्ट इन केस कुमार साहब की बात सुनकर हमारे मन में ऐसा विचार आए, तो हमें ये चीज को चेक कर लेना चाहिए कि जिसके साथ हम ऐसा करने वाले हैं वो उस चीज को स्पोर्टिंगली लेगा या नहीं, है ना।
1: या ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी,
0: ये बहुत जरूरी है।
1: वी शुड नॉट हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग्स और मेक हिम, मे नॉट गिव एनी मेंटल एगोनी टू हिम फॉर द टाइम बीइंग। ओके,
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीतों का आनंद उठाएं, कुमार सुब्रमण्यन साहब के ही गाए हुए, आइए सुनते हैं ये प्यारे से गीत।

0: अमेजिंगली ब्यूटिफुल संग, बहुत ही सुंदर गायकी। कुमार साहब, एक ट्रिक क्वेश्चन पूछूं आपसे?
1: हाँ जी जरूर।
0: लोग कहते हैं और हमेशा लिखा भी हुआ है हर जगह कि गलती से सीख लेनी चाहिए।
1: गलती से
0: सीख लेनी चाहिए ना, गलती से अगर हम गलती हो जाए तो हम लोगों को
1: जरूर जरूर यस यस।
0: और गलती
1: आज भी मैं मानता हूँ
0: जी, और कहते हैं कि गलती करनी नहीं चाहिए।
1: सही बोला आपने।
0: तो जब गलती करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे सर?
1: नहीं कोई बात नहीं, आप अगर आपकी इच्छा है वो तो है, लेकिन गलती किया नहीं करना चाहिए तो मैं सही बोला आपने, लेकिन गलती करना ये महसूस किया कि आपने गलती किया वो महसूस किया तो और उसको दोबारा नहीं करना चाहिए, ये बड़ी जिंदगी में बहुत बड़ी अच्छी चीज हम सीखना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली। तो कुमार साहब कभी ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल आप देख लेना, सुरक्षित तरीके से सेफ तरीके से ही हमें बताना। कभी ऐसी कोई गलती हुई जिससे आपने कुछ लेसन ले लिया और अपने आप को एक बहुत अच्छा इंसान बनाया?
1: हाँ वो तो वो है ऐसे मेरी इंसिडेंट्स देयर जहाँ पे मैं अपने आप को आबेल मुझे मार ऐसा स्थिति में मैं ऐसा स्थिति में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ।
0: हाँ दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बहुत बड़ा लेसन है, अननेसेसरली जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है।
1: आई
0: वेरी वेल रिमेम्बर एक ये जो एनिमेशन मूवी आई थी जिसमें सिम्बा और मफूसा थे, उसमें मफूसा हुज अ फादर ऑफ सिम्बा वो कहते हैं बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन यू गो आउट एंड लुक फॉर ट्रबल। बहादुर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पंगा ले जाके। केयरफुल रहने में कोई बुराई नहीं है। चलिए,
1: बुराई नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: आइए कुमार साहब की ही आवाज में गाए हुए ये गीत सुने और इसके बाद वापस आए कुमार साहब से ही बात करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटिफुल।
1: शुक्रिया
0: कुमार साहब। चलिए अब आपके संगीत पर आते हैं। अपनी पसंद के सबसे अच्छे, जो भी आपको बिल्कुल फेवरेट हो, एक एक जस्ट वन प्लीज, एक गायक का नाम बताइए और हमें यह बताइए कि आपको पर्सनली किस तरीके का म्यूजिक पसंद है। चूज कीजिए, फोक म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में, बॉलीवुड में, गजल में, भजन में या रीजनल। सो आई हैव आस्क्ड यू टू क्वेश्चंस। पहला तो अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताइए।
1: वैसे तो फेवरेट सिंगर सभी है, बिकॉज उस जमाने के जो भी सिंगर थे सब लेजेंड्स, दे आर टेक्निकली वेरी साउंड इन देयर ओन वे, बट मैं जिससे ज्यादा प्रभावित हुआ, दो सिंगर थे, एक सिंगर का नाम लेना पड़ेगा ना आपको,
0: okay.
1: तो एक ही
0: दो ले लीजिए, चलिए
1: वो जरा, बिकॉज दोनों दोनों मेरे दिल के मूड के एक एक एक, एक मूड के लिए एक सिंगर इतना मेरे दिल में जमता है और दूसरा मूड के लिए दूसरा सिंगर। तो पहला मेरा मोहम्मद रफी साहब।
0: Okay.
1: तो जैसे आपने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक, मोहम्मद रफी साहब ऐसे सिंगर थे जो हर किस्म के गाने गाते थे। तो आई नॉर्मली प्रेफर टू सिंग ऑल टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, लाइक गजल, कव्वाली, क्लासिकल, लाइट, यू नो, मस्ती के गाने, ये सब गाना पेश भी किया हूँ मैं।
0: okay.
1: कुछ प्रोग्राम में किया हूँ मैं। तो सेकेंड आके तलत महमूद है मेरे।
0: oh.
1: जो दर्द को जो जानता है, द इंटेंस फीलिंग, That is तलत महमूद।
0: क्या बात है, क्या
1: इन दोनों मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है मुझे।
0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो जस्ट इन केस आप तलत महमूद साहब के साथ गाना गाने का आपको मौका मिले, वो अवतार ले लें, आपके पास आए कि चलो कुमार साहब गाना गाते हैं,
1: बहुत बहुत
0: तो उनके साथ मिलकर कौन सा गाना गाना चाहोगे आप?
1: उनका गाना, बहुत सारे गाने हैं तो उनका गाना मुझे अभी क्या बोलेगा, ये गाना है उनका खुद, पर्दे में वो पेश आते हैं, शुक्रिया शुक्रिया ए प्यार तेरा।
0: ओहो वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल।
1: दिल को कितना खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया, दिल को कितना खूबसूरत गम दिया, शुक्रिया।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: अनिल बिस्वास जी का।
0: अरे वाह, मतलब बोल ही इतने प्यारे हो रहे हैं, दिल को इतना गम दिया उसका शुक्रिया, मतलब देखिए जो बंदा आपको चोट पहुंचाता है उसको भी आप शुक्रिया कहते हैं,
1: उस पे भी वो मुस्कुरा कर कहता है शुक्रिया, कोई बात नहीं, हम आजमा लेंगे ये भी।
0: वाओ ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से ख्यालात के साथ ये गीत सुने कुमार साहब के, एंड देन विल कम बैक।

0: बहुत खूब।
1: कुमार साहब, हमें ये बताइए ना कि आप अपनी पूरी जिंदगी में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं? ग्रेटिट्यूड किस चीज की तरफ आपका सबसे ज्यादा होता है? किस चीज की तरफ आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए नहीं थकते?
2: पहली बात, शुक्रगुजार मैं इसलिए कहूंगा आज की तारीख में और आज की स्थिति पे कि भगवान ने मुझे संगीत का जरा सा कुछ ज्ञान दिया, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं।
1: वाओ, दैट्स वेरी नाइस। जो भी कला ईश्वर ने कुमार साहब को आशीर्वाद के तौर पे दी, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कुमार साहब भगवान का उस चीज के लिए।
2: हाँ जी।
1: और उसी चीज की पूजा करते हैं, दैट इज सो ब्यूटीफुल।
2: हाँ जी।
1: हाँ जी। तो चलिए दोस्तों, इसी विचार को विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये गीत पेश करता हूं कुमार साहब के ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर कुमार साहब, वक्त की पाबंदी, हमें सब लोग को बंधे रहना पड़ता है, तो बस
1: हाँ जी,
0: चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे सभी सुनने वालों के लिए जो भी आपके मन में आए कह दीजिए, बात कीजिए उनसे।
1: मेरे सुनने वाले प्यारे संगीत प्रेमियों, आप सबके शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप हमारे गीत सुन के आपको जरूर पसंद आया होगा, ऐसा मुझे मैं उम्मीद करता हूँ। और धन्यवाद एसएन रेडियो और समीर जी को और सभी उनकी टीम को, उन्होंने मुझे एक बेहतरीन मौका दिया आज इस मंच में खाने के लिए, शुक्रिया जी।
0: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप मिले कुमार सुब्रमण्यन साहब से, उनके प्यारे गीतों का लुत्फ उठाया। कुमार साहब, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और हमेशा गाते रहिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज, इतनी अच्छी आज की सुबह एकदम यादगार, जिंदगी का यादगार घड़ी होगी मेरे लिए।
0: वाओ, थैंक यू।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ, तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: है।
1: आइए दोस्तों, आइए मित्रों, आइए महानुभावों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के इस पवित्र और बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में। जैसा हम हमेशा करते हैं, ये प्रोग्राम है अपने अंदर झांकने का, अपने को पहचानने का, आध्यात्म को समझने का। तो आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, जिनसे हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, वो हैं सुनीता मैम। मैं सुनीता मैम का बहुत बहुत आभारी हूं, साधुवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि सुनीता मैम अपने बारे में हमें बताइए, थोड़ा सा बताइए, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
2: जी नमस्ते समीर जी, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया आपके प्रोग्राम पे और ये मेरी खुशनसीबी। मेरा नाम सुनीता हरगुनानी है, मैं बेसिकली हीलर हूँ, स्पिरिचुअल हीलर
1: जी।
2: और मैं काफी रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और आकाशिक हीलिंग भी आती है मुझे, करुणा रेकी, आकाशिक हीलिंग एंड पास्ट लाइफ के बारे में भी, मतलब रिग्रेशन जो बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो भी मुझे आता है। तो बेसिकली ये सब एक इसी लाइन में ही डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं स्पिरिचुअलिटी में
1: जी।
2: और ऑटोमेटिक राइटिंग भी मुझे आती है एंड लाइक सोल से कनेक्ट करना भी आता है
1: जी।
2: तो ये सब अलग अलग पार्ट ही है इसी लाइन के और मैं प्रैक्टिस करती हूँ काफी टाइम से। अब तो मुझे मेरे ख्याल से 15 साल हो गए
1: जी,
2: ऊपर ही हो गए होंगे तो बस।
1: बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों आपने जाना कि सुनीता मैम बेसिकली एक हीलर है, एक चिकित्सक हैं। चिकित्सक मतलब वो जो हील करते हैं, जो हम लोगों को उचित बनाने की कोशिश करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हैं। बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम, जाहिर सी बात है जब आप हील करते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके वेलबींग के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी मानसिकता के लिए कोलैबोरेट करते हैं, तो बात जिस विषय में हो रही है इस प्रोग्राम में, मैं उस विषय में आपसे पूछना चाहूंगा। बात आध्यात्मिकता की है, स्पिरिचुअलिटी की है और जैसा मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड हैं। तो आपके हिसाब से, आपके परसेप्शन से, आपकी समझ से आध्यात्म की क्या परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी?
2: स्पिरिचुअलिटी

0: आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इट्स अ पाथ। तो इसमें ये रहता है कि आप अपने आप पे काम करते हैं, मतलब कि जब आप अपने आप से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ,
1: जी
0: मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आता है, तो
1: जी
0: जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, दिस ये एक पार्ट हो गया आपका स्पिरिचुअल पाथ पे चलना। ये तो मतलब बहुत लंबी यात्रा रहती है, लंबी जर्नी है। तो ये तो जस्ट एक इनिशियल फर्स्ट स्टेप जो मैं बोल रही थी, कि जब हम खुद ये सोचना या कॉन्शियस होते हैं, कि अवेयरनेस होता है हमारे अंदर, बिकॉज यूजुअली लाइफ में क्या भाग दौड़ चलती रहती है, बच्चे होते हैं, शादी होती है, पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन सबका चलता ही है।
1: जी
0: इसके ओवर एंड अबाउट दैट, जब आपको लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर भी कुछ पावर है, कुछ शक्ति है, तो
1: जी
0: उस शक्ति से जब हम जानना चाहते हैं, उस शक्ति के बारे में हम कोशिश करना चाहते हैं जुड़ने की, तो ये एक चलने लगे हम स्पिरिचुअल पथ पे। तो यही मेरे हिसाब से तो यही है कि ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लाइफ लॉन्ग तो क्या, मतलब लाइफ्स की जर्नी रहती है स्पिरिचुअलिटी। अल्टीमेटली हमारा सोल इसीलिए ही जन्म लेता है ताकि हम अपने आप पे काम करते रहें। मेन पर्पस तो हमारा सोल का वही रहता है,
1: जी
0: आत्मा का, कि आत्मा की शुद्धि हो, और उसी पे ही कैसे हम अलग-अलग अपने विकार जो है वो नष्ट करते जाएं। इसीलिए जन्म जन्मांतर की मेरे ख्याल से ये जर्नी रहती है, यात्रा रहती है। एंड यही है कि कब इंसान मतलब बहुत दुर्लभ से ये मानते हैं हम लोग कि ये जीवन मिलता है, हर इंसान को ये योनि नहीं मिलती इंसान की, बहुत जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनको ये योनि में जन्म मिलता है। तो इसका हमें बहुत फायदा उठाना चाहिए इस चीज का,
1: जी
0: कि हम ही एक ऐसे हैं इंसान की जो योनि बोलते हैं, जो उस स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसी और में ये पावर नहीं है, मतलब जैसे जानवर हैं, झाड़ है, पत्थर है, नदियां हैं, इनमें ये पावर नहीं होता, समझ नहीं होती। हम इंसान जब जन्म लेते हैं, वी हैव दैट पावर एंड द नॉलेज, ज्ञान जो हमें है उस प्रकृति का। तो इसे हमें बहुत दुर्लभ मानना चाहिए कि हम इतने मतलब थैंकफुल रहना चाहिए कि वी आर सो हैविंग दिस प्रेशियस लाइफ।
1: जी
0: तो ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और इस पे काम करना जरूरी है, मेरे ख्याल से हर आत्मा को करना चाहिए, पर हर एक का अपना समय रहता है।
1: तो दोस्तों, आपने जाना कि कितने आसान शब्दों में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान शब्दों में सुनीता मैम ने हमें बताया कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैम, मुझे आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये बताइए कि आध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपने सबसे पहले कब सुना? किसने बताया आपको कि स्पिरिचुअलिटी कोई चीज होती है, कोई प्रैक्टिस होती है, एक धारा है जीवन की? सबसे पहले आध्यात्म से आपका परिचय कब हुआ?
0: मेरे ख्याल से मोस्टली जैसे हम फैमिलीज में देखते हैं, ये बचपन से ही हमारे मतलब माता पिता ही हमें बचपन से कुछ न कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं और कनेक्ट करवाते हैं उस हायर पावर से। तो वो तो आगे चल के हमें पता पड़ता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी वर्ड है, बट मोस्टली तो ये सबके जीवन में बचपन से ही वो संस्कार डाले जाते हैं हर फैमिलीज में,
1: जी
0: तो वहां से ही स्टार्ट होता है ये बचपन से। हर फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, बट मेरे तो फैमिली में मैं बोलूंगी वहीं से ही स्पिरिचुअलिटी का मुझे ज्ञान बचपन से ही रहा, नॉलेज रहा। इनडायरेक्टली हमेशा स्टोरीज वैसी सुनाई गई, गाइड किया गया, या बुक्स ला के दे दिए, पढ़ लो, गाने सुनाए, मंदिर में ले जाना, तो वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हो गया।
1: जी, वेरी नाइस। जाहिर सी बात है, हमारे भारतीय संस्कृति में ये चीज हमेशा से रही है कि हमारे घर से ही हमको अध्यात्म के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में मालूम पड़ता है, और यही चीज सुनीता मैम ने भी बहुत क्लियरली बताई, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आगे एक प्यारा सा भजन सुनने के बाद मैं सुनीता मैम से और बातचीत करूंगा। हमारे साथ बने रहिए।

0: सुनीता मैम, आगे बढ़ते हुए प्लीज मुझे ये बताइए कि क्या अध्यात्म को सीखने के लिए, समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को लर्न करने के लिए क्या हमें किसी टीचर की, गुरु की, किसी टीचिंग्स की जरूरत है?
1: स्पिरिचुअलिटी जैसे मैं अभी आपसे बता रही थी कि ये एक पाथ है, जर्नी है, एक पथ है
0: जी।
1: तो इसमें हर एक किस टाइम पे वो कॉन्शियस होता है आत्मा, कि उसको रियलाइज होता है कि अब मुझे मैं कौन हूं। जब वो क्वेश्चन करना शुरू करती है आत्मा, तो वो जब इस पथ पे चलना शुरू करती है आत्मा लेवल पे
0: जी,
1: तब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूं से आ जाता है कि मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। अब आगे आ जाता है कि गुरु की जरूरत है।
0: जी
1: मेरा मानना यह है कि जब आप खुद अवेयरनेस में रहते हैं तो गुरु अपने आप आपके पास आते हैं। जब आप रेडी होते हैं
0: जी
1: तो गुरु अपने आप आपके पास आएंगे, आपको कहीं गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: ओके।
1: पर हाँ, गुरु की जरूरत रहती है जब आपकी आत्मा उस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो तैयार होती है कि मुझे और ज्ञान चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। तो जैसे आप अलग अलग तरीके से इंसान का अलग अलग मार्ग रहते हैं ना, कोई भक्ति मार्ग करता है, कोई कर्म योग की करता है, कोई बुक्स पढ़ता है, कोई भजन जाता है करने, कोई चैरिटी में बिलीव करता है। हर एक का डिफरेंट वे है कि वो कैसा चाहते हैं जिससे उन्हें वो पीस मिलता है। अल्टीमेटली ये इस जर्नी इज मोर लाइक पीस, पीस ऑफ योर ओन सोल।
0: जी,
1: तो वो हम खोजने वही निकलते हैं पीस को। क्यों? क्योंकि मन आत्मा बड़ी दुखी है, अंतरात्मा दुखी रहता है, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, तो खोजना शुरू करती
0: जी
1: मैं कौन हूँ, क्या करें, किधर जाएं। कोई सोचता है चलो भगवान की पूजा कर लें, हमारा थोड़ा ये तकलीफ कम हो जाएगी। कोई बोलता है मैं थोड़े बुक्स पढ़ लूं, है क्या, कोई बोलता है मैं भजन कर लूं। तो जब हम वो ढूंढना शुरू करते हैं तो ये एक स्टार्ट होती है जर्नी की। और आगे चल के जैसे आप तैयार होते जाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से गाइडेंस देने वाला, हेल्प करने वाला कोई तो ऐसा गुरु मिल ही जाता है जो आपको इस जर्नी पे आगे ले जाता है।
0: जी, बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है सुनीता मैम, बतला भी रही हैं ये, और ये बहुत नेचुरल सी बात लगती है कि अगर कोई मार्ग दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो जरा आसानी हो जाती है, फिर चीजें जरा इजीली समझ में आ जाती हैं। बाकी तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस की बात है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेट करेंगे या सोचेंगे उस बारे में, तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आप कुछ कह रही हैं मैम?
1: यही मैं बोल रही थी कि गुरु जब हमें आता है हमारे लाइफ में तो वो उसका बहुत मतलब, अब आप समझिए कि आप और ऊपर जर्नी में जाने ही वाले हैं, आप एक हायर लेवल पे वाइब्रेट करने वाले हैं, और वो गुरु के साथ से ही, एक बोलते हैं ना गुरु ही हमें जो भव सागर से पार लगा देता है, तो वो बहुत हेल्प हो जाती है। गुरु के पथ तो रहता है पर गुरु के मार्ग में जब आजू बाजू में जो जंगल में हम जब चलते हैं तो आपके जो भेड़ भेड़िए जो भी हैं वो सब कोई तकलीफ नहीं देता क्योंकि गुरु का साथ रहता है, आप आराम से वो पथ क्लियर कर लेते हैं।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक। तो मैम जाहिर से बात है हम लोग अध्यात्म की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, बिल्कुल साथ साथ ही चलता है, वो है धर्म, रिलीजन। आपके हिसाब से मैम, धर्म और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इनमें क्या फर्क है?
1: धर्म अगेन ये एक टूल है
0: जी,
1: है ना
0: जी,
1: एक मींस टुवर्ड्स एन एंड है
0: जी।
1: तो एंड तो वही है स्पिरिचुअलिटी सबकी, उस आत्मा से, उस सोर्स से कनेक्ट होना है। तो हमें उस ऊपर वाले में विलीन होना है। तो विलीन होने का मार्ग अलग अलग जैसे टूल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिना रिलीजन के आप वो अचीव नहीं कर सकते। रिलीजन एक हेल्प हो जाता है
0: जी,
1: जैसे आप खाना बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे चम्मच से खाना नहीं बनेगा या बड़े चम्मच ही चाहिए या ये, बट सही चम्मच अगर होता है तो एक आसान हो जाता है। तो मेरा मानना है कि रिलीजन का भी उतना ही काम है, उससे ज्यादा उसे इम्पोर्टेंस